ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101

0: right. In the name of Allah, the merciful and the most beneficent, Assalamu alaikum, and of course, Assalamu alaikum, Ahli Pakistan. Janab se mukhatib aapka host, aapka dost, DJ Sahil signing in. All right, Janab, kaise aap tumam log, yakinan theek thaak hai, mane fit hai, maze mein hai, khoob enjoy kare apni zindagi ko. It's 8 to 5 on the dial, ladies and gentlemen. से लेके ठीक है काफी देर तक मेरा आपको साथ रहने वाला है तो खूब सारी मस्ती है लॉट्स ऑफ फन ओनली ऑन एफएम 101 इट्स 8 टू 5 ऑन द डायल फ्राइडे 17th ऑफ जुलाई 2026 अगर आज आपका बर्थडे है तो मे यू हैव अ मेनी मेनी मोर बहुत सारी दुआएं नेक तमन्नाएं और खुश रहें आबाद रहें और कोई मीठा करा दे मुंह हमारा यार तो मतलब कुछ भी नहीं अच्छा आज ना मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं थोड़ा डाउन हो रहा हूँ डाउन होने की वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ वही लापरवाहियाँ हम लोग जो करते हैं नॉर्मली वाटर इनटेक मैंने अच्छी रखी लेकिन मैंने खाना पीना कल नहीं किया था तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं थोड़ा सा डाउन हो रहा हूँ तो मैंने रात को खाना नहीं खाया और सुबह भी नाश्ते के बगैर मैं रेडियो आ गया हूँ असल में पता है क्या वजह है मैं आपको बताऊँ गर्मी की वजह से खाने नहीं होता है गर्मी की वजह से खाने नहीं होता आप सुबह उठते हैं तो वैसे ही आपको दिल इतना अजीब हो रहा होता है और खाने के बारे में सोच के तो आपको मुश्किल हो रही होती है लेकिन ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक मील है आपकी लाइफ का आपको पता है अगर आप सुबह में नाश्ता नहीं करते हैं उसके असरात आपको रहते हैं पर देख लें मैं जैसे कि आपको कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डाउन फील कर रहा हूँ तो इट मींस कि अगर मुझे नाश्ता मैं कर लेता तो फिर मेरी ये वाले हालात नहीं होते लेकिन क्या है ना कि सुबह सुबह ये सब हो नहीं रहे होता तो जनाब क्या चल रहा है जिंदगी में 17 जुलाई हो चुकी है गिन गिन के दिन गुजर रहे हैं और मैं तो यही कहता हूँ कि मैं कल भी मैं अपने घर में ये बोल रहा था मैंने कहा जी शुक्र करें मई जून जुलाई का भी मिड से ज्यादा निकल गया है बस ये अगस्त निकलेगा ना फिर सितंबर की दोपहरों को आप थोड़ा सा जो है वो अवॉइड करेंगे और रातें ठंडी हो जाएंगी फिर इशू नहीं होंगे आप लोगों को ऐसा ही होगा कंफर्मेशन नहीं है मुझे अभी क्योंकि जिस तरह मौसम जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं ना उसके हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त अनएक्सपेक्टेड है हर चीज कुछ नहीं समझ आता किस वक्त क्या हो जाए अब मेरे
1: दिस इज FM 101

0: This is FM 101.
1: No mind, Khaled. Summer cum laude.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: दिस इज FM 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: I'm on the way, बस आधा घंटा दे।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

कहानी है ना, बात करनी ना तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले है फेक, उनके बारे में मेरा है टेक। I don't care what you think, what

मधक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मधक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मधक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मधक सा और चुप।

This is FM 101.

सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और चीन ने तजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, डिजिटल मईशत और मसनूई जहानत के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तआवुन से पाकिस्तान में मोटरवे नेटवर्क की तौसी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का अमल जारी है। बहरी असलाहत के बारे में वज़ीर आज़म के टास्क फोर्स आबी ज़राअत को वसअत देने और बरामदात बढ़ाने के लिए झींगा परवरी को फरोग देने के इकदाम कर रही है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की 19 साल से कम उम्र खवातीन खिलाड़ियों के दरमियान 5 T20 क्रिकेट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज कराची में खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM 101.
4: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
5: Suror Sangeet, Saazo Awaaz. आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: हेलो।
1: हेलो। ओके, आई एम सॉरी।
0: इट्स फाइन। आई थिंक

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो।
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी नहीं।

दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और चीन ने तिजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, डिजिटल मईशत और मसनू जहानत के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तआवुन से पाकिस्तान में मोटरवे नेटवर्क की तौसी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का अमल जारी है। बहरी असलाहत के बारे में वज़ीर आज़म के टास्क फोर्स आबि ज़राअत को वसअत देने और बरामदात बढ़ाने के लिए झींगा परवरी को फरोग देने के इकदाम कर रही है। और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत सूबे के जनूबी अजला की तरक्की और खुशहाली पर खसूसी तवज्जो दे रही है। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान और चीन ने तिजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, डिजिटल मईशत और मसनूई जहानत के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। यह इत्तेफाक राय शंघाई में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दरमियान मुलाकात में हुआ। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन दोतरफा ताल्लुकात के वसी तर दायरा इख्तियार का जायजा लिया। उन्होंने दोतरफा शराकत दारी की मुसलसल मजबूती और मुस्तहकम तरक्की पर इत्मीनान का इजहार किया। फिकेन ने चीन पाकिस्तान इकतसादी रहदारी के दूसरे मरहले के तहत आला मयार की तरक्की को आगे बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया।

काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ सूफी की सदा।

0: बस मैं आती हूँ।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने कारोबार में आसानी के लिए हुकूमत के पॉलिसी इकदामात पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत की है। उलमाए कराम और मशायख ने दहशतगर्दी और तखरीबी सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज से इजहार यकजहती किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नों में खुफिया इतलात के बुनियाद पर कार्रवाइयों के दौरान 24 खवारजी हलाक कर दिए हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की 19 साल दूसरा T20 आज कराची में खेला जाएगा।
1: दिस इज FM 101.1।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: Big Style. FM 101.

मुझे भूल न जाना, मुझे याद न आना।

Big radio, big style. FM 101.

And then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है ना, बात करनी ना तुझको सुनानी।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

जिसको बेहतरी की तरफ हमारी क़यादत ने एक बड़े अच्छे अंदाज के अंदर पहले सुलहबंदी और उसके बाद मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ ले जाने के अंदर बेपनाह कोशिश की, ख़ास तौर पे वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनकी काविशों के बावजूद एक दफ़ा फिर जंग बढ़ती हुई खित्ते के अंदर नज़र आ रही है। और उसकी वजह से जो तेल की मंडियों के अंदर भौंचाल आया हुआ था पहले, वो एक दफ़ा फिर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है हमारे सामने। पिछले चंद दिनों के अंदर ख़ास तौर पे डीज़ल की कीमत, उसके अंदर बेपनाह इजाफ़ा आ चुका हुआ है। अगर मैं मिसाल दूं तो जो फ्लैट्स का रेट, जो बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर डीज़ल का भाव उसकी तरफ इशारा करता है, वो तकरीबन $110 से बढ़ के आज $140 की सतह के ऊपर आ चुका हुआ है। पेट्रोल का प्लेट्स बिल्कुल उसी तरह, जो $89 के करीब था, वो तकरीबन $100 के लगभग के ऊपर पहुंच चुका हुआ है, जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर और हर जगह आपने देखा है कि तवानाई की कीमतें एक दफ़ा फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो मैं आज जो वज़ीरे आज़म साहब और जो सारी काबीना की तरफ से जो फ़ैसला हुआ है, उसके ऊपर आने से पहले सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि हुकूमत की तरफ से मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी आवाम का, जिन्होंने बेपनाह तहमल के साथ इस तकलीफ़ को हुकूमत के साथ मिल के झेलने की कोशिश की। यकीनन तकलीफ़ तो हर घर में आई। वज़ीरे आज़म साहब ने वफाकी हुकूमत के तकरीबन 130 अरब रुपए के वसाइल इस्तेमाल करते हुए लोगों को सहारा देने की कोशिश की। सदर जरदारी साहब की मदद के साथ, सारे सूबाई वज़राए आला की मदद के साथ टारगेटेड सब्सिडी का प्रोग्राम 130 अरब के बाद कई सौ अरब से उसको आज भी जारी रखे हुए हैं हम। उसके बावजूद भी यकीनन तकलीफ़ आवाम के अंदर मौजूद है, इसलिए जो आज फैसला किया गया है वो ये है कि इस सारे निज़ाम के अंदर किस तरह से आपको शफाफियत और लानी है, ताकि लोग अपने तौर पे ख़ुद समझ सकें कि क्यों कीमतों का बढ़ाना नागुज़ीर है। और अगर हम वही काम करें जो 2022 में एक हुकूमत ने किया था, तो उसकी कीमत किस तरह से आवाम को महंगाई की शक्ल के अंदर साल हा साल झेलनी पड़ती है। तो काबीना ने और वज़ीरे आज़म साहब ने जो फ़ैसला किया है वो ये है कि रियासत को किसी ख़तरे से लाहक करे बग़ैर शफाफियत इस निज़ाम में लाने के लिए ओगरा को अब से ये ज़िम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फ़ैसला करे, और ना सिर्फ फ्लैट्स का वो रेट जिसके मुताबिक दुनिया के अंदर कीमतें तय की जाती हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे, पर इसके साथ साथ उस कीमत का जो आपके और हमारे लिए हर पेट्रोल पंप के ऊपर नज़र आती है, उसके पीछे वो कौन कौन से अंसर हैं जिनसे वो कीमत को बनाया जाता है, वो भी ओगरा को कहा गया है कि आवाम के सामने पब्लिश करा करे, ताकि लोगों को पता चले कि ये कितना नागुज़ीर है कि हम इस मामले को आगे शफाफियत के साथ लेके चलें। और जो फैसला कर रहे हैं तकलीफ दे ज़रूर होगा, पर किस तरह से वो रियासत को मजबूत करने के लिए लाजिम था। इसके साथ साथ एक बात और जो मैं अताज साहब से इजाज़त लेके करना चाहूँगा,
कि बहुत सी गुफ्तगू होती है कि शायद हुकूमत ने लेवीज का बोझ बढ़ाते हुए अवाम को जो शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था कि सारे का सारा गिरावट का फ़ायदा अवाम को हम मुंतकिल करेंगे, कहीं उसको रोका हुआ है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, हुकूमत अपने उस वादे पे आज भी कायम है। जिस तरह से डीजल की कीमत 520 रुपए से गिरा के आज 300 के बैंड के अंदर मौजूद है, उसी तरह पेट्रोल की कीमत के अंदर भी एक बड़ी गिरावट 70-80 रुपए की आपने देखी है जब बैनुल अक़वामी मंडी में आई, वो मुंतकिल की गई। पर जहाँ तक लेवी का मामला है, जो आपके बैनुल अक़वामी मुआहिदों के तहत आपको अपने बजट के लिए आगे लेके चलनी है, तो मैं ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये भी गुजारिश करता हूँ कि जंग से पहले 27-28 फरवरी को जो पेट्रोल के ऊपर लेवी और कार्बन सपोर्ट लेवी जो उसकी सतह थी, पेट्रोल के ऊपर भी और डीजल के ऊपर भी, आज भी वो सतह जो हमारी कीमत के अंदर है उससे कहीं कम है, और उसके अंदर जो मुआहिदों से बढ़ के किसी किस्म का कोई अजाफी बोझ आवाम के ऊपर नहीं डाला गया। तो शफाफियत भी और जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर बोझ कम करना, दोनों अमल के ऊपर हुकूमत आगे चल रही है और शफाफियत भी लेके आ रही है, और हुकूमत को इस निज़ाम से बाहर निकाल के रेगुलेटर जिसकी जिम्मेदारी है कि सारे शराकतदार कंज्यूमर भी हुकूमत भी और ऑयल सेक्टर के बारे में भी मुफादात को बैलेंस करे और शफाफियत के साथ उसको आगे लेके चले। और इसके साथ साथ जो एक बड़ी चीज़ हमने देखने में आई है वो ये है कि जिस शोबे से हुकूमत ने अपना रोल महदूद किया है उसके अंदर हमेशा अवाम के लिए बेहतरी आई है। तो ये जो डेली प्राइसेस का अनाउंसमेंट है, 7 दिन के वर्किंग डे जो प्लैट्स की एवरेज होगी उसकी बिना के ऊपर ये भी यकीनी बनाया जाएगा कि जिस तरह से कीमत ऊपर जाती है ऊपर जाए, और जिस तरह से गिरती है उसके मुताबिक खुद ब खुद ही, ना अता साहब से पूछा जाए, ना मुझसे पूछा जाए, ना वजीर आजम से पूछा जाए, फौरी तौर पे वो अवाम को मुंतकिल कर दी जाए रोजमर्रा की बना पे। और ये डीरेगुलेशन की तरफ एक और कदम होगा जो हुकूमत ले रही है। और मैं अपनी बात को इख्तिताम करते हुए ये कहूँगा कि इसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, अभी तो हम सब तकलीफ में है ना, हुकूमत भी वसाइल अपने जो महदूद होने के बावजूद बोझ उठाने की कोशिश कर रही है। हमने इस शोबे को डीरेगुलेशन की तरफ लेके जाने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने एक आला सतह की कमेटी मेरी सरबराही में बनाई हुई है, उसके 4 मीटिंगें 4 इजलास हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला 15-20 दिन के अंदर इस जंग से बाद के माहौल में हमने किस तरह से ये एनर्जी प्राइसिंग का और एनर्जी सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर जिसके ऊपर आपकी अगली नस्लें इस हुकूमत की कारकर्दगी को भांपेंगी कि क्या हमने उनके लिए कोई बेहतरी की कि नहीं की, उसके ऊपर भी अपनी सिफारिशात को पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा और अवाम के आगे लेके आएंगे और शफाफियत को बढ़ाते हुए डीरेगुलेशन की तरफ आगे जाएंगे। और जो एनर्जी सिक्योरिटी पाकिस्तान की कि क्या वजह है कि आज 70-80 साल के बाद भी पाकिस्तान 90% अपनी तवानाई की ज़रूरत इम्पोर्ट्स के ज़रिए मीट करता है। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब, फील्ड मार्शल साहब ने जो एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसकी मुझे जिम्मेदारी दी। मैं एक सेकंड के अंदर आपको एक मिनट में बताते हुए अता साहब को फिर गुजारिश करूंगा अपने ख्यालात का इजहार करें। उसके अंदर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या हुकूमत रख सकती है और उसके पास वसाइल हैं कि नहीं है, उसके लिए एक एजुकेटेड फैसला करने के लिए इंटरनेशनली रिनाउंड कंसल्टेंट्स के थ्रू स्टडी कमीशन हो गई हुई है। उसका आर्किटेक्चर क्या बनेगा, उसको क्या हुकूमत उसके लिए $500 मिलियन अरब डॉलर एक साल में नहीं 5 साल में क्या मुहैया करके अगली नस्लों के लिए कोई बेहतरी कर सकती है, उसके ऊपर भी एक एजुकेटेड फैसला होगा। दूसरी चीज़ कमर्शियल बॉन्डेड स्कीम्स के किस तरह से बैनुल अक़वामी मंडी के जो बड़े बड़े तेल के ताजर हैं उनके साथ और अपने दोस्त ममालिक
सऊदी अरामको के साथ बैठ के, कुवैत पेट्रोलियम के साथ बैठ के, कतर एनर्जी के साथ बैठ के, अमेरिकन कंपनियों के साथ बैठ के, चाइनीज कंपनियों के साथ बैठ के, क्या हम उनको ये मोटिवेट कर सकते हैं कि आप अपने ज़खायर हमारे पास रखें, यहाँ से सारी मंडियों के अंदर उसको फरहाम करें, अगर खुदा ना खास्ता हुकूमत को जंग की सूरत में कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम आपसे परचेज करने का राइट रखते हैं। तो उसका निज़ाम भी मशावरत के साथ तय कर लिया गया है काबीना के अंदर, अगले हफ्ते वो समरी भी चली जाएगी और उसके ऊपर भी आप देखेंगे पेशरफ्त होगी। इसके साथ साथ बैन अलावामी हमने मकामी तौर पर हमने अपनी तेल और गैस की दरियाफ्त को बढ़ाने के लिए क्या किया है, अपस्ट्रीम सेक्टर के अंदर जो आपकी ईएनपी एक्टिविटीज़ हैं, आप जानते हैं टर्किश पेट्रोलियम अभी वज़ीर आज़म साहब बड़ा कामयाब दौरा करके तुर्की से वापस आए, टर्किश पेट्रोलियम 20 साल के बाद समुंदर के अंदर तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए अपना जहाज़ अक्टूबर में लेके आ रही है, उनके वज़ीर यहाँ पर आ रहे जा रहे हैं। इसके अलावा IMF के साथ सर्कुलर डेट जो इस हकूमत में जिसको ख़ात्मा कर दिया था, पर क्योंकि पहले ये एक बीमारी हमारे कंधों पे लाद दी गई है, उसको किस तरह से रिजॉल्व करके ईएनपी कंपनीज को पैसे देने हैं कि वो अपना काम और तेज़ी से कर सकें, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। रिफाइनरी अपग्रेड पॉलिसी कि हम हर किस्म का तेल इस्तेमाल करके, खाम तेल इस्तेमाल करके बैन अलावामी मंडियों के कंपेरेटिव कीमतों के ऊपर आवाम को मुहैया कर सकें, वो पॉलिसी भी कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी में चली गई है, उसके ऊपर भी जल्द फैसला हो जाएगा। इसके साथ साथ गैस के शोबे के अंदर अनबंडलिंग के लिए क्या कर रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को किस तरह से कंसोलिडेट कर रहे हैं, और आखिर में कि किस तरह से अपने मुल्क का जो इंतज़ामी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरह से बेहतर बनाना है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला बेहतर अंदाज के अंदर आगे लेके चलेंगे ताकि तारीख इस हकूमत को अच्छे अल्फाज के साथ याद करे। अगर वक्ती तौर पे छोटी मोटी कोई तकलीफ आई भी है उसको हम मिलके पेटी कस के जिस तरह ऑस्टेरिटी के जरिए बाकी मामलात के जरिए इस टाइम को निकाल लेंगे, पर यकीनन तारीख के अंदर जो काम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब करके जाएंगे इंशाल्लाह ताला वो उसके ऊपर तारीख उनको अच्छे अल्फाज से याद कर, इस तरह ऑस्टेरिटी के जरिए बाकी मामलात के जरिए इस टाइम को निकाल लेंगे, पर यकीनन तारीख के अंदर जो काम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब करके जाएंगे।

0: अंदर किसी किस्म की किसी जगह पे होने की कोशिश हुई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उसके मुताबिक कानून आपको हरकत में होता हुआ आज से नजर भी आएगा और इंशाल्लाह ताला हम आवाम के तहफ्फुज़ात को जिस हद तक हो सकेगा तहफ्फुज़ देने की भरपूर कोशिश करेंगे।
1: देखिए बात यह है कि तेल की कीमतों का आलमी मंडी में बढ़ना उसका ताल्लुक कशीदगी के साथ है और कौन सा मुल्क है जो कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहा है? वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने इस पे जो एफर्ट किया, जो वज़ीर आज़म साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने, पूरी दुनिया उसकी गवाही भी देती है, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ भी है। अब जब कशीदगी बढ़ती है, आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आता है क्योंकि पाकिस्तान तेल इम्पोर्ट करता है, ये एक नेचुरल सी बात है। इस हवाले से जब पूरी दुनिया में जब कशीदगी अपने उरूज पर थी और पूरी दुनिया में तेल की शॉर्टेज थी और दुनिया के बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक उनमें लाइनें लगी हुई थी, उनके अंदर तेल मिल नहीं रहा था, तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म साहब ने टाइम से पहले इजाफी ज़खायर का बंदोबस्त किया और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बाहर से, और ये ब्रीफिंग देते रहे अली परवेज़ साहब के यम्बो सऊदी अरेबिया में, फुजैरा यूएई के अंदर, वहाँ से जो है वो कार्गोज़ मंगवाए गए और ये इंश्योर किया गया कि पाकिस्तान के किसी शहर किसी कस्बे में पेट्रोल और डीजल की किल्लत नहीं हो। और बहुत सारे ममालिक वो राशनिंग की तरफ गए, उन्हें बताया गया कि जी मोटरसाइकिल को जो है वो 10 लीटर मिलेगा इतने पीरियड के लिए, गाड़ी को जो है वो 50 लीटर मिलेगा इतने पीरियड के लिए, मगर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ना राशनिंग हुई और ना एक दिन किल्लत हुई। जब भी ब्रीफिंग दी जाती रही पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से तो बताया गया कि जी हमारा एक डेढ़ दो महीने का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़खायर मौजूद हैं। तो ये हुकूमतों का काम होता है कि वो अनइंटरप्टेड जो एक सप्लाई है तेल की, जिससे आपकी पूरी मईशत भी चलती है, आमदोरफ्त है, आपका पूरा एक निज़ाम चलता है, ट्रेड और हर चीज़, तो वो उसको इंश्योर करे और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं समझता हूँ बड़ा एफिशिएंटली टाइम से पहले उसका बंदोबस्त किया गया। अब कीमतों का उतार चढ़ाव जब दुनिया में कीमतें आसमान से बातें कर रही थी तो वफाकी हुकूमत ने अपने रिसोर्सेज से डेवलपमेंट बजट को काट के 129 अरब रुपये की सब्सिडी दी और कोशिश की कि ये कीमतें ना बढ़ें। दुनिया में बढ़ी थी, पाकिस्तान में नहीं बढ़ी थी क्योंकि हम उसको सब्सिडी के जरिए काउंटर कर रहे थे और ये वज़ीर आज़म साहब का बड़ा कॉन्शियस फैसला था कि ये अवाम पर बोझ नहीं जो है हमने ट्रांसफ़र करना। बहुत सारे सवाल आज जन्म लेते रहे हैं कि जी ये कीमतों का तय्यन कैसे होता है, जिस तरह अली साहब ने कहा प्राइसिंग फार्मूला वो सबके सामने पब्लिश किया जाएगा, रखा जाएगा, वो ऑलरेडी भी मौजूद है मगर उसको फॉर्मली ओग्रा बींग रेगुलेटर वो उसको पब्लिश कर देगा। अभी जो होता है कि अभी लोग कई दफ़ा कहते हैं जी आज कीमत कम हुई तो ट्रांसफ़र क्यों नहीं, वो इसलिए कि एक हफ्ते की एवरेज ली जाती है, एक हफ्ते में अगर ये जुम्मे को अनाउंस होता है तो पिछले 6 दिनों की एवरेज है और वो जो एवरेज ली जा रही है एक दिन बड़ा एक दिन कम हुआ, एक दिन बड़ा एक दिन कम हुआ, वो जितनी एवरेज बनेगी वो इकट्ठी 7वें दिन जुम्मे को वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अगर पूरा हफ्ता कमी आई है तो वो इकट्ठी करके वो जुम्मे को ट्रांसफ़र हो जाएगी, अगर पूरा हफ्ता बढ़ती रही है तो वो जुम्मे को बढ़ जाएगी। दुनिया के कई ममालिक में ये निज़ाम राइज है कि अगर बड़ी है तो फौरी ट्रांसफ़र हो और अगर कम हुई है तो फौरी ट्रांसफ़र हो। उसका एक ही तरीका है कि जो प्राइसिंग का एक मैकेनिज़म है हफ्तावार उसको रोज़ाना की बुनियादों पर लाया जाए और रोज़ाना की बुनियादों पर जितना उतार चढ़ाव हो उसके मुताबिक वह मुंतकिल कर दिया जाए। और देखिए इस बात का ज़रूर एहसास है और बड़ी शिद्दत से एहसास है कि ये आसान नहीं है और तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो उसका एक इम्पैक्ट आता है और इसका बड़ी दर्दमंदी के साथ हुकूमत को मुकम्मल एहसास है, मगर सब्सिडी का भी जो इंतज़ाम किया गया उसके बाद टारगेटेड सब्सिडी भी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, एग्रीकल्चर पे, मोटरसाइकिल यूजर्स उनके ऊपर, वो तमाम लोगों को वो उसमें शामिल किया गया जो डिज़र्व करते थे। अब देखिए रोज़ाना की बुनियादों पे ये जो कीमतों के तायुन से ये होगा कि एक जो गिला किया जाता था कि जी फौरी ट्रांसफ़र नहीं होती, वो रोज़ाना की बुनियादों पर उतार चढ़ाव जितना होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और दूसरा, इस निज़ाम में मज़ीद शफाफियत आएगी और कौम के सामने प्राइसिंग फार्मूला होगा। और दूसरी जो एक मिसकंसेप्शन है वो ये है कि जी लेवी बहुत बढ़ गई है और हर रोज़ कोई ना कोई स्टोरी आ रही होती है। देखिए लेवी जंग से पहले जो थी उससे, जिस तरह अली साहब ने कहा है, वो उससे कम है अगर बराबर नहीं तो। तो लेवी में तो किसी किस्म का इंक्रीज नहीं आया, लेवी कम ज़रूर की गई थी, वो भी एक स्पेशल एफर्ट किया गया था उस लेवी को कम करने के लिए और वह लेवी कम रही बहुत देर, और उसके लिए एक स्पेशल

0: डिस्पेंसेशन की गई, एक आउट ऑफ द वे एफर्ट किया गया। तो देखिए, जब ये आउट ऑफ द वे एफर्ट किया गया तो लेवी में तो कोई इजाफा नहीं हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि क्योंकि लेवी में इजाफा नहीं है और कीमतों का अब रोज की बुनियाद पर तयन होगा, प्राइसिंग फार्मूला सबके सामने होगा, तो ये पूरा निज़ाम तेल की कीमतों के तयन का ये शफाफ बनेगा। एक और बात जो अजहद ज़रूरी है कि हमें एज अ कंट्री, एज एन इकॉनमी इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना है, वो नागुजीर है। इट इज़ इनएविटेबल, आज नहीं तो कल हमें वो करना होगा। हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, अगर वो बढ़ता रहा और इसी तरह कीमतों का उतार चढ़ाव, कभी ऊपर कभी नीचे, इसका इम्पैक्ट अवाम पर आता रहा, तो इसका बेहतरीन हल जो है वो ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की तरफ मूव करें। और मुझे खुशी होती है, मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे इलेक्ट्रिक बाइक्स पर जा रहे हैं, हमारी बच्चियाँ स्कूल कॉलेज इलेक्ट्रिक बाइक्स पर जा रही हैं। तो ये रुझान, इसको भी फ़रोग देना जो है, मैं समझता हूँ कि वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की जिम्मेदारी है। एक और मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि जी बड़ा मुनाफा कमाया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कानों को इस वक्त हाथ लगा रही हैं। लेट मी अलाउ मी टू से दिस, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तहकीकाती इदारे जिसमें एफ आई ए सरफहरिस्त है, और उसके बाद रेगुलेटर को यह कहा कि इजाफी मुनाफा कमाने की मैं इजाज़त किसी को नहीं दूंगा, और वो मुनाफा वापस भी उनसे लिया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि तारीख में कभी नहीं हुआ। इस वक्त आप किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को पूछें कि क्या उन्होंने इजाफी मुनाफा कमाया है, जवाब है नहीं। और होल्डिंग के खिलाफ अभी कल भी एक ऑपरेशन हुआ, एक जगह से कोई जखीरा अंदोजी करते हुए को पकड़ा गया, सख्त तरीन एक्शन किया गया, रिकवरी करवाई गई, इजाफी रिकवरी करवाई गई। तो ये तासर जो है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी बड़ा मुनाफा कमा रही, उनको खुली छूट है, कतन नहीं। और जहां आपको लगता है कि कोई ऐसा मामला है, तो आप डायरेक्ट ओगरा को उनकी वेबसाइट पे, उनकी ईमेल पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि जी फलां ऑयल मार्केटिंग कंपनी बड़ी ज्यादती कर रही है। आई एश्योर यू कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे जितनी सख्ती और जितनी रेगुलेशन इस वक्त है, वो पहले कभी नहीं थी। और ओगरा एक रेगुलेटर है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, मगर अब उधर नया निज़ाम जो आया है आईटी बेस्ड, जिसको वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आप आईटी बेस्ड निज़ाम लेके आएँ, एक ऑनेस्ट और एक अपराइट ऑफिसर एज चेयरमैन आए हैं जिन्होंने आके एक नया निज़ाम वज़ा किया है। तो ओगरा भी अपना काम जो कर रहा है कि कोई इजाफा ना हो, कोई इजाफी मुनाफा ना हो, किसी किस्म की ज़खीरा अंदोजी ना हो, उसके लिए पूरा निज़ाम मुतहरक है, और किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो ज़खीरा अंदोजी करें, या वो आर्टिफिशली कीमतों को इन्फ्लेट करें, या वो इजाफी मुनाफा कमाएं। देखिए, बिज़नेस करना, मुनाफा कमाना हर किसी का हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मगर क्राइसिस का फ़ायदा उठाते हुए अगर मुनाफाखोरी की जाए, ज़खीरा अंदोजी की जाए, वो जिस तरह एक्शन पहले भी किया गया है, अब भी किया जाएगा। तो ये निज़ाम के अंदर शफाफियत लाने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि ये जो इंटरनेशनल एक है मामला जिसके तहत कीमतें कभी ऊपर हैं कभी नीचे हैं, और वो गिला दूर करने के लिए कि जी ये फौरी ट्रांसफ़र क्यों नहीं होता, ये हफ्ते बाद क्यों होता है, और वो हफ्ते बाद ऑब्वियसली औसत निकलनी है, एवरेज निकलनी है, तो वो अब रोज़ाना की बुनियादों पर किया जाएगा, और मैं समझता हूँ इससे बेहतरी होगी। दुआ ये है कि हमारी क़यादत को अल्लाह ताला कामयाब करे, और ये जो सालसी की एफ़र्ट्स हैं उसमें हम कामयाब हों, ताकि ये जंग के शोले हमेशा के लिए ठंडे हों और मामलात जो हैं वो सेटल होने की तरफ जाएं, ताकि ये तेल की कीमतों के अंदर ठहराव आए और कि तेल की कीमतें नीचे आएँ। और बाकी देखिए, इस पर मैं समझता हूँ कि सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सियासी बयानियाँ इसके ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, आपने बात करनी है, एंड आई अप्रीशिएट हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, कई लोग एक्सपर्ट्स हैं, वो इस पर बात करते हैं, ज़रूर करें, और आप हमारे से प्राइसिंग फार्मूला पर बात करें, आप प्राइसेस के तयन के ऊपर बात करें, आप ओएमसीज के हवाले से बात करें, और वो कई दफ़ा बड़ी हेल्दी डिबेट होती है। अभी लास्ट वीक आपने देखा अली परवेज साहब की और फारूक सलीम साहब की एक डिबेट हुई, वो बड़ी हेल्दी डिबेट थी, और टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स वहाँ से भी आ रहे थे, यहाँ से भी जा रहे थे, हमने भी अपना मौकफ़ दिया, उनको भी हमने कहा कि जी आप भी अपना मौकफ़ दें और बताएं कि कहाँ पर हम इस्लाह कर सकते हैं रिमेनिंग विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने तहम्मुल से हमारी बात सुनी। तो ये हमारी तरजीह है कि अवाम को जिस हद तक हो सके, जिस कदर हो सके, वो रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म साहब इसमें बहुत कोशां भी रहते हैं और इसके बारे में बड़े कंसर्न भी रहते हैं, और वो तमाम मिनिस्ट्री डिविजन्स को ये हिदायत भी करते रहते हैं और वो पर्सनल निगरानी भी करते हैं। और मैं समझता हूँ ऑस्टेरिटी के मेजर्स बड़ी जो है वो तंदही के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ वो लिए गए, उसके नतीजे में बचत भी हुई। वो जो 129 अरब रुपया डेवलपमेंट बजट से काटा, उसमें बहुत सारी रकम ऑस्टेरिटी और बचत के थ्रू भी जो है वो हासिल की गई थी। तो अल्लाह ताला खैर करें, आगे जाते हुए मैं समझता हूँ कि इससे बहुत बेहतरी आएगी, और एक लोगों के सामने हर चीज़ होगी कि प्राइस का तयन होता कैसे है, और प्राइस जो है वो जितनी भी होगी वो ट्रांसफ़र करने में भी जो है मैं समझता हूँ कि लोगों के सामने एक आसानी होगी। बहुत शुक्रिया जी।
1: वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़ और अली परवेज़ मलिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से अहम गुफ्तगु कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव जारी है, पेट्रोलियम कीमतों के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा खत्ते में कशीदगी की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों से कार्गो मंगवा कर तवानाई के ज़रूरियात को पूरा किया गया, हुकूमत की बेहतर पॉलिसी की वजह से तवानाई की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। वफाकी वज़रा का यह भी कहना था कि अब ओग्रा की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है ना, बात करनी ना तुझको सुनानी सोचो।

मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: खवातीनो हजरात, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कलाकार किसी को खो के लिखते हैं और जो गा नहीं सकते वो सुन के रो लेते हैं। तो आप सबकी खिदमत में पेश है किसी की गुजारिश, किसी की इल्तिजा, किसी की शिकायत। जरा तवज्जो फरमाएं।

0: मिल जाऊं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूं, यह है कमाल मेरा।
1: सुर और संगीत साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है ना, बात करनी ना तुझको सुनानी सोच।

थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: You are listening FM 101. Tune into the one above. One above.
2: आप सुन रहे हैं FM 101. सुनते रहिए FM 101.
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: I love FM 101.
1: You are listening FM 101. Tune into the one above. One above.
4: आवाज़ें चुप होती हैं, जज़्बात बुलंद हैं।

सौ सलीमें थी हर एक हरफे जुनू से पहले, क्या कहूं अब मैं, कहूं या न कहूं से पहले। वलजना मुझे कहते हैं ज़ियान जुम, और आप सुन रहे हैं FM 101 नेटवर्क लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज। प्रोग्राम है हरफे जुनू, 12 बजे तक आपका और मेरा साथ रहने वाला है। आज बहुत अरसे बाद 10 से 12 बजे की स्लॉट पे आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। गो के मेरे प्रोग्राम्स 12 से 2 बजे होते हैं। आज भी जुमे वाले दिन प्रोग्राम हुआ करता है, लेकिन वो 12 से 2 होता है। लेकिन आज बस अचानक से एक प्रोग्राम बना, एक सिलसिला बना, और मुझे मौका मिला आपके साथ दोबारा गुफ्तगू करने का। कुछ जिंदगी में कुछ चीजें जब अचानक से होती हैं तो कभी कभी बड़ी खुशगवार होती हैं। गो के अचानक होने वाली हर चीज खुशगवार नहीं होती, कभी कभी वो हादसा भी कहलाती है। लेकिन कुछ बड़े हसीन और खुशगवार हादसे भी होते हैं। खैर, अब ये हादसा है या कोई खुशगवार मोड़ है या ये क्या है, ये तो चलें देखते हैं कि क्या है। बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बात करेंगे तो बातों से बात निकलेगी। अब वही हरफे जुनू सबकी जुबां ठहरी है, जो भी चल निकली है वो बात कहाँ ठहरी है। तो देखते हैं कि बातों से जो बात निकलती है अब वो ठहरती है भी कि नहीं। बहरहाल बातों के सिलसिले होंगे, दिल की बातें होंगी, वो बातें जो अक्सर हम कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन मसलहत आड़े आ जाती है। बड़ी बुरी शय है ये मसलहत भी। हम जिंदगी में बहुत सारे काम करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम उसकी एबिलिटी भी रखते हैं, अहलियत भी रखते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से रुके होते हैं कि कुछ मसलहतें हैं, और उन मसलहतों के तहत रुक जाते हैं, हम ठहर जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, एक पड़ाव डाल लेते हैं अपने आप में, कभी अपनी जुबान पे, कभी अपने सोचों पे, और कभी अपने वजूद पे। लेकिन कोशिश करेंगे कि आज इस प्रोग्राम में उस पड़ाव को, उस बंद को तोड़ें। वो बात जो हम कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो करें, वो सुने, क्या ख्याल है? आइएगा, बात कीजिएगा, गुफ्तगू कीजिएगा, कोई सवाल हो, कोई जवाब हो। तो आ सकते हैं, बयान कर सकते हैं। हाँ, फोन कॉल्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। फेसबुक पे आइएगा, सबसे आसान तरीका है। फेसबुक पे हमारी पोस्ट पे आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमारा फेसबुक का ऑफिशियल फैन पेज है FM 101 लाहौर। मैं इस वक्त FM 101 लाहौर से बराह रास्त हूँ। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, मुल्तान, कोयटा, पिशावर, सियालकोट, और जहाँ जहाँ पे भी मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप तमाम सामेईन को मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। चाहतों के सिलसिले सोजो नेहा तक आ गए, हम तो दिल तक चाहते थे, तुम तो जहां तक आ गए। बाहर हाल आए हैं तो अब कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे, क्या ख्याल है? एक गाना प्ले करते हैं, प्रोग्राम का पहला ट्रैक, वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से शुरू करने की कोशिश करते हैं, साथ आपके मैसेजेस, आपकी फीडबैक को भी शामिल करेंगे। एक अदद मौजू भी है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मौजू के अलावा भी अगर आप कोई गुफ्तगू करना चाहें, कोई सवाल, कोई जवाब, कोई बात, कोई नज़्म, कोई गज़ल, कोई खूबसूरत सा जुमला,
कोई जहन में अटकी हुई कोई सोच, कोई परेशान करती हुई बात, किसी का रवैया, किसी की सर्द महरी, कुछ भी अगर आपके जहन में है, कुछ कहना सुनना बताना चाहते हैं तो आइएगा प्रोग्राम में शामिल होइएगा। बहुत सारी बातें हैं जो करने वाली हैं और अभी 2 घंटे का ये सफ़र है, साथ साथ रहिएगा। ये खूबसूरत सा गाना आप सबकी समातों की नज़र, सुनते रहें, साथ साथ रहें। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं।

0: Ok, ready?
1: आप सुन रहे हैं FM 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।

वेलकम बैक, एक दफा फिर से खुश आमदीद। 10:18 हुए। मैं हूं ज़िया अंजुम और मेरे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं। इनके मैसेजेस को गाहे बगाहे शामिल करते रहते हैं। कोमल खान हैं, प्रोग्राम सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। सुगरा जाफरी हैं, थैंक यू सो मच आपकी भी यहाँ पे मौजूदगी का। सिद्रा हैं हमारे साथ बहावलपुर से, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, आपकी बातें बहुत सारे लोगों को खुशी और बहुत सारे दिलों को सुकून देती हैं, हमेशा खुश रहें, आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कहती हैं कि कुछ पंछी झुंड में उड़ते हों और रास्ता भी कुछ मुश्किल हो, कुछ दूर उफक पर मंजिल हो और एक पंछी घायल हो जाए और बेदम होकर गिर जाए, तो रिश्ते नाते प्यारे सब कब उसकी खातिर रुकते हैं। इस दुनिया की है रीत यही, जो उड़ते रहो तो साथ बहुत, जो रुक जाओ तो तन्हा हो, जो रुक जाओ तो तन्हा हो। क्या बात है। होता है ज़िंदगी में कमोबेश यूं ही होता है, हम सब कहीं ना कहीं ना एक दूसरे के साथ ज़रूरतों के बायस जुड़े हैं। जहाँ पे हमें एक दूसरे की ज़रूरत कम होती है या ख़त्म होती है, तो ऑटोमेटिकली जो रابطے हैं, जो सिलसिले हैं, वो ख़ुद ब खुद कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। ये ज़रूरतें किसी भी तरह की ज़रूरतें हो सकती हैं, कभी कभी ये इमोशनल नीड्स होती हैं, कभी कभी ये कुछ फिजिकल नीड्स होती हैं, कभी कभी काम के बहाने होते हैं। बहरहाल हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जो ही ये डिपेंडेंसी ख़त्म होती है या कम होती है, तो फिर उसके बाद जो रवैये देखने को मिलते हैं वो बाज़ औक़ात बड़े तकलीफ़ दे होते हैं। ख़ास तौर पे वो अफराद, मैं अक्सर उन लोगों से मिलता हूँ जो अपनी उम्र गुजार चुके होते हैं और अब बुढ़ापे में होते हैं, और घर के किसी एक कोने में बीमारी काट रहे होते हैं। कभी आप उनके पास जाके उनसे हाल अहवाल पूछें तो आपको मालूम होता है कि वो बड़े तन्हा रह चुके हैं, अब लोग उनके पास नहीं आते क्योंकि अब उनसे कोई डायरेक्ट काम नहीं पड़ता, कोई वास्ता नहीं पड़ता। अगर कोई आता भी है तो अपनी ज़रूरत को आता है या फिर कभी कभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए आता है, और वो सारा दिन अपने कमरे में दीवारों को घूरते रहते हैं। चंद एक मशगले अपनाए होते हैं, लेकिन वो मशगले भी कब तक, कितनी देर तक। और वो जो तन्हाई है, वो जो जालिम तन्हाई है, और सिर्फ ये बुढ़ापे की बात नहीं है, कभी कभी कोई शख्स बीमार हो जाए, कभी कभी कोई शख्स किसी ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ पे आसपास लोग उसको ना जानते हों या वो लोगों को ना जानता। जाहिर बात है, जब हम किसी को नहीं जानते या लोग हमें नहीं जानते तो भी राबता नहीं होता। कल ही मैं एक साहब के पास बैठा हुआ था, कहते कि जब मैं एक सरकारी पोस्ट पे था, जब मैं पावर में था, तो मेरा फ़ोन मुसलसल सारा दिन बजता रहता था, मैसेजेस पे मैसेजेस आते थे, फ़ोन पे फ़ोन की घंटी बजती थी, दिन में 300 कॉल्स आती थी और हर किसी का जवाब देते देते मैं थक जाता था। अब ऐसा है कि मैं उस पोजीशन पे नहीं रहा, मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, अब मेरी वो पोजीशन और वो पावर नहीं रही, तो अब मुझे दिन की 3 कॉल्स भी बहुत मुश्किल से आती है। पहले वही लोग जो तोहफे तहाइफ लेके मेरे आगे पीछे फिरते थे, अब वो कहीं दूर देख भी लें किसी फंक्शन पे, किसी इवेंट पे, तो रास्ता बदल लेते हैं,
कि यार इसे मिलना पड़ेगा, इसको सलाम करना पड़ेगा। होता है जी, ये दुनिया है, क्या करें।

आपके कुछ मैसेजेस जो कि हमें फेसबुक पे आए हैं, इनकी तरफ भी बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे आपका क्या कहना है, क्या कहते हैं आप। जैन अली सलाम करते हैं, वालेकुम सलाम। मैं मोहसिन फ्रॉम दुनियापुर, कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ, वैसे इतना भी ठीक नहीं हूँ, कुछ कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन बाहर हाल ठीक हूँ। अगर यहाँ हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो यकीनन ठीक हूँ। रियाज भट्टी हमारे साथ हैं, भट्टी साहब शुक्रिया आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया। नज़ीर खोसो कहते हैं कि कुछ भी इत्तेफाकन नहीं होता, हर वो रूह जिससे आप मिलते हैं आपकी तकदीर में लिखी होती है, ताकि आपको कुछ सिखाए, शफा दे, या आपसे मोहब्बत करे, या फिर आपको कोई ऐसा सबक दे कि आप सारी जिंदगी उसको ना भूलें। हामिद चांद वेलकम कहते हैं हमें, बहुत शुक्रिया। मैं भी आपको वेलकम कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। कुरंगी कराची से आप हमें सुन रहे हैं। बरकत रमदानी जमाली बलोच हैं, आपका शुक्रिया। मलिक वसीम अवान सियाल की सियालकोटी मुंडा, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं, बहुत सारी दुआएं देते हैं, सबको सलाम कहते हैं। आशिक कशकेली हैं, आप भी सलाम करते हैं, सबको दुआएं देते हैं और हमें वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। 4471 पे हमें फैसलाबाद से आयशा का मैसेज आया है, कहती हैं कि भाई आपको दिल की गहराइयों से अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? शो इज़ नाइस, अल्लाह आपको हमेशा खुश और सलामत रखे, आमीन। किसी को नफरत है और कोई प्यार करके बैठा है, किसी को यकीन नहीं है और कोई एतबार करके बैठा है। कितनी अजीब है ये दूरियाँ, कोई मिलना नहीं चाहता और कोई इंतज़ार करके बैठा है। भाई आज म्यूज़िक की आवाज़ ठीक नहीं है, प्लीज़ ठीक कर दें। मैंने कुछ बेहतर तो किया है इसको, होपफुली ये पहले से बेहतर हो गई होगी, और अगर नहीं हुई तो आप मुझे दोबारा बता सकते हैं, हम इसको मज़ीद ठीक करने की कोशिश कर लेंगे। एक सवाल है जो अक्सर मैं भी सोचता हूँ और यकीनन आप भी ये सोचते होंगे, मेरे ख्याल से ये सवाल हर किसी के जहन में ज़रूर आता है, इस पे कभी ना कभी गुफ्तगू ज़रूर होती है, इसके ऊपर अक्सर लोग बात करते दिखाई देते हैं। वो सवाल ही आज मेरे इस प्रोग्राम का मौजू है। आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, वो लोग जो बड़े तेज तर्रार होते हैं, वो लोग जो बड़े चालाक होते हैं, वो लोग जो झूठ बोलते हैं, वो लोग जो धोखा देते हैं, वो लोग जो कभी वफा नहीं करते, वो लोग जो लेन देन में, मामलात में, ताल्लुकात में हेर फेर करते हैं, वो लोग जो सीधे सीधे नहीं चलते, हमने अक्सर देखा है कि वो लोग ही बज़ाहिर हमें कामयाब नज़र आते हैं हर एतबार से। अगर हम रिस्क की बात करें तो हम देखते हैं कि पैसे वाले या रिस्क वाले अक्सर वो लोग होते हैं जो बड़ी बेईमानी कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर लोग ओहदों पे वो मौजूद होते हैं जो किसी ना किसी की टांग खींच के वहाँ तक पहुँचे होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि इक्तदार में वो लोग होते हैं जो बहुत सारे लोगों की गर्दनों पे, बहुत सारे लोगों की शाहरगों पे पांव रख के वहाँ तक पहुँचे होते हैं। हम देखते हैं कि जो जितना ज़्यादा मैनिपुलेटर होता है वो उतना ज़्यादा कामयाब होता है, उतना ज़्यादा दौलतमंद होता है, उसकी ज़माने में उतनी ज़्यादा जय जयकार होती है, उतना ज़्यादा मशहूर होता है, मारूफ होता है, उसकी उतनी ज़्यादा सुनी जाती है। ये एक मिथ है, इसके ऊपर अक्सर हम गौर करते हैं। अक्सर हम लोग ये भी कहते हैं कि यार
सीधे सीधे चल के कभी कामयाबी नहीं मिलती, टेढ़ा होना पड़ता है। हम ही लोग अक्सर इस किस्म के जुमले बोलते हैं। हम लोग ही कहते हैं कि जो शख्स बिल्कुल सीधा सीधा चलता है, सही सही चलता है, जो हमेशा सच का सहारा लेता है, वो पीछे रह जाता है। मेरा आपसे सवाल है कि आप इस चीज को मानते हैं? क्या आपका भी बिलीव यही है? और अगर कहीं ना कहीं ये रियलिटी है ऐसी, तो ऐसा क्यों है? बुरे लोग क्यों कामयाब होते हैं? बुरे लोग ही क्यों हमेशा जीत जाते हैं? इस्तेहसाल करने वाले क्यों आगे बढ़ जाते हैं? जो नेक शरीफ या सीधे लोग होते हैं, वो हमेशा धोखा क्यों खाते हैं? उनके हिस्से में हमेशा बेवफाइयां क्यों आती हैं? वो हार क्यों जाते हैं? वो पीछे क्यों रह जाते हैं? ये सवाल है मेरा आज, ये हमारा गुफ्तगू का मौजू है। मैं चाहूंगा कि आप आए, इसके ऊपर कुछ बात करें। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या वाकई ऐसा है या नहीं है? अगर ऐसा है तो क्यों है? और अगर ऐसा नहीं है तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं?

क्योंकि बात करेंगे तो बात बनेगी, बात से बात निकलेगी, बातें ही तो करने आते हैं यहाँ पे, बातें करने के ही तो पैसे मिलते हैं। हाय, सुनते रहे साथ साथ रहे FM 101 पे, मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं।

जमी को उजलत, हवा को फुर्सत, खला को लुकनत मिली हुई है। जमी को उजलत, हवा को फुर्सत, खला को लुकनत मिली हुई है। हम एहतजाजन जमी पे जिंदा हैं, या इजाजत मिली हुई है। हम अपनी मर्जी के तार

0: पे चुनकर फलक पे चेहरे बना रहे हैं हम, अपनी मर्जी के तारे चुनकर फलक पे चेहरे बना रहे हैं। बगैर छत के पड़े हुए हैं तो ये सहूलत मिली हुई है। बिछड़ने वालों की बददुआएं हमारी उम्रें बढ़ा रही है। ये जहर खालिस नहीं है, इसमें किसी की चाहत मिली हुई है। हर एक नाव भटक भटक कर हमारे साहिल पे आ रही है। हर एक जजीरे के बासियों को हम ऐसी वहशत मिली हुई है। हमारी औकात के मुताबिक हमारे दर्जे बने हुए हैं। किसी को कुदरत, किसी को मोहलत, किसी को किस्मत मिली हुई है। हमारी औकात के मुताबिक हमारे दर्जे बने हुए हैं। किसी को कुदरत, किसी को मोहलत, किसी को किस्मत मिली हुई है। जमी को उजलत, हवा को फुर्सत, खला को लुकनत मिली हुई है। हम एहतजाजन जमी पे जिंदा हैं या इजाजत मिली हुई है, या इजाजत मिली हुई है। हाय, कैसे कर लेते हैं यार। आपकी कॉल्स का सिलसिला लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे क्यों लगता है बज़ाहिर के बुरे लोग ही हमेशा कामयाब होते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? क्या कहते हैं आप? इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइएगा, बात कीजिएगा। पहली कॉल लेते हैं, देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो, अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं?
1: मैं बिस्मा बात कर रही हूँ, लाहौर से।
0: बिस्मा, ठीक हैं आप? खैरियत से हैं?
1: मैं ठीक हूँ।
0: क्या कहना चाहेंगे?
1: आपका शेड्यूल चेंज हो गया?
0: नहीं, शेड्यूल चेंज नहीं हुआ। आज हमारा प्रोग्राम बस 10 से 12 होगा। वैसे मेरे रेगुलर जो प्रोग्राम है वो मंगल को रात 12 से 2 ही होते हैं।
1: जैसे ये टाइम अच्छा है 10 से 12 बजे का।
0: क्या कहना चाहेंगी?
1: आपका टॉपिक क्या है?
0: आपने सुना ही नहीं?
1: क्या है इसका?
0: सुना ही नहीं, बगैर सुने आपने कॉल कर लिया।
1: आप मुझे बताएं, मुझे वो ना,
0: मैं तो बड़ी देर से बता रहा हूँ, आपने बगैर सुने में कॉल कर ली।
1: आपने कहा कोई बात भी कर सकते हैं टॉपिक के अलावा?
0: नहीं, आप तो मुझसे टॉपिक पूछ रही हैं ना, चलें कोई और बात करें।
1: अच्छा, मैं एक मोहब्बत वाली एक लाइन बताती हूँ आपको।
0: जी।
1: मोहब्बत का लुत्फ मोहब्बत करने में है, कोई शख्स इन जज्बात से यकीनन ज्यादा लुत्फ हासिल करता है जो इसके अपने दिल में पैदा होते हैं, बनिस्बत इन जज्बात के जो वो दूसरों के दिल में पैदा करता है। ये एक लाइन थी जो कि मैंने आपको बताना था और पूछना था इस बारे में, क्या वाकई ऐसे होता है?
0: ये आप ना लिख के दोबारा हमें भेजें।
1: लिख के
0: भेजें? हाँ, फेसबुक पे ना कमेंट्स में आप लिख के दोबारा भेजें।
1: हाँ, तो फेसबुक पे नहीं है मेरा भी, मैं वहाँ पे मैसेज नहीं कर सकती आपको।
0: ओहो, चलें कोई बात नहीं। चलें बिस्मा, इसके ऊपर हम बात करते हैं, जरूर बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया आपने कॉल की।
1: अच्छा, एक और बात बतानी थी।
0: जी।
1: आज आप सॉन्ग तो बड़े अच्छे लगा रहे हैं, ये जो अभी लगाया तो ये अच्छा था।
0: अच्छा।
1: वो मोहब्बत कौन से चक्रों में डाला है ये वो। वैसे एक बात तो बताएं, आपको मौजू क्या है, मोहब्बत वाला ही कि कोई और है?
0: आप अभी प्रोग्राम सुने, आपको पता चलेगा।
1: अच्छा, ठीक है।
0: थैंक यू बिस्मा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
2: अल्लाह का करम, बिल्कुल आप सुनाए, लाहौर स्टूडियो से आप बात कर रहे हैं वन ऑन के लाइव सिचुएशन।
0: कौन बात कर रहे हैं आप?
2: मैं अपने आप को कभी कभी आरजे शहरयार कह लेता हूँ।
0: आरजे शहरयार?
2: कभी कभी अपने आप को कह लेता हूँ।
0: मुस्तकिल क्या कहते हैं?
2: मेरा नाम शहरयार है, मजे हम ऑन ड्यूटी हम पाकिस्तान।
0: अच्छा, तो रेडियो कहाँ पे करते हैं आप?
2: मैं करता नहीं हूँ, बस शौक है।
0: अच्छा, करना चाहते हैं?
2: जी जी, आपके लिए एक शेर है
0: जी।
2: तो क्या दिल अब क्या करने जा रहा है तू? क्या दिल अब क्या करने जा रहा है तू? पहले एक बार टूटा है दिल, पहले एक बार टूटा है दिल, अब मोहब्बत करके मर जाऊंगा।
0: वाह क्या बात है, कैसे कर लेते हैं शहरयार भाई आप? ये इतनी खूबसूरत बातें कैसे कर लेते हैं आप?
2: शौक शुरू से ही सर जी, मुझे रेडियो का जुनून है। इसको कहते हैं ना, एक किसी को एक्टिंग का शौक होता है, मुझे रेडियो का जुनून।
0: अच्छा, तो कभी आपने कोशिश की, अप्लाई किया?
2: नातालुक होकर अपने रिश्तों से मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता था।
0: वाह,
2: नातालुक होकर मैं सारे रिश्तों से तेरे साथ जुड़ना चाहता था। अब मुंह से कुछ तो बोल, अब मुंह से कुछ तो बोल, नाराजगी क्या है मुझसे, खुदा की कसम एक बार बोल देता तुझसे नफरत करता हूं। हाँ जी सर जी, शौक है बस।
0: आप कहीं और पहुंच जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं आप?
2: मेरी खुशहारी इसी तरह ही है।
0: आप आपसे तो, मैं सवाल कुछ कर रहा हूँ, आप एकदम कहीं और पहुंच गए।
2: जी जी सर, बोले।
0: बहुत शुक्रिया शहरयार भाई, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया।
2: एक गजल है, आप नुसरत का एक गजल है, प्लीज काइंडली अगर वो पेज करें तो। मैं सुन रहा हूँ आपका शो, तेरा मैं खाना याद आता है भाई नुसरत फजल खान।
0: चले मैं पूरी कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छे लोग हैं यार आप सब, बस मुझे ही पता नहीं क्या हो जाता है। है ना। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस आपके देखते हैं। शहीर सफदर सुलहरी हमारे साथ हैं, कहते हैं एवरीथिंग इज टेम्प्रेरी ज़िया भाई एंड सैड बीजीएम इज परमानेंट। अच्छा ठीक है। और जैन अली कहते हैं कि सर काम करने को दिल नहीं करता और मजबूरी भी है, कोई समझ नहीं आ रही ज़िंदगी की, और मेरा काम गारमेंट्स का है, प्लीज़ कोई हल बताएं प्लीज़। काम करने का अमूमन उस वक्त आपका दिल नहीं करता क्योंकि आपका दिल किसी और तरफ लग रहा होता है, आप करना कुछ और चाहते हैं लेकिन आपको मजबूरन करना कुछ और पड़ रहा होता है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट आता है आपके पैशन और प्रोफेशन का, आपके ख्यालात का और आपके काम काज का, तो फिर यकीनन आप जो एग्जिस्टिंग काम कर रहे होते हैं उससे आपका कहीं ना कहीं दिल उठ जाता है, आप उसको उस तरह से नहीं कर पाते जैसे वो काम करने का हक होता है, और जो आप करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पा रहे होते या हो नहीं पा रहा होता, तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो एक गैप आता है, एक अजीब सा गैप आता है कि जिसमें आप अपने आप में खला महसूस करते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक खला महसूस करते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में वो खुशी नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है, या वो हैपनिंग नहीं है, या आप अपनी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं बेजार हो रहे हैं, तो अपना कोई ऐसा शौक जो जिसको आपने बहुत अरसे से दबा के रखा हो, जिसको आपने बड़े अरसे से उसको सरप्रेस किया हो, उसको दोबारा से शुरू करें। यकीन जाने आप अपने अंदर बड़ी तब्दीली महसूस करेंगे, वो एक जो मोनोटनेस होती है ना वो टूटेगी, फिर आपका दिल करेगा उसको काम करने को, उस काम के लिए जीने को। फिर देखिएगा आपके अंदर से, इसी आपके अंदर से, इसी वजूद के अंदर से ऐसी ऐसी एनर्जीज आएंगी, और वहाँ वहाँ से एनर्जीज आएंगी कि आप खुद हैरान होंगे या आपके इर्द गिर्द वाले लोग हैरान होंगे कि यार ये तुम्हारा नया रूप एकदम से अचानक से कहाँ से आया। तो अपना वो काम ज़रूर ढूंढें, वो काम ढूंढेंगे तो यकीन जाने वो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, और अगर आपने ढूंढा हुआ है तो उस काम को थोड़ा थोड़ा वक्त देना शुरू कर दें, आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी तब्दीली आएगी। फरहीन शहजादी हैं, सलाम करते हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल हैं आपके जनाब? मैं ठीक ठाक हूँ। रेहाना खान सलाम करती हैं, वालेकुम सलाम। भक्कर से आप हमें सुन रही हैं, और फरहीन कहती हैं कि हिजर उगने लगा है पोरों पर, दिल में क्या बीज बो गए हो तुम, एक लम्हा को सोचते भी नहीं, कितने मसरूफ हो गए हो तुम। क्या बात है। मरीना बिलाल ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम कहती हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया जो कि जहाँ जहाँ से, जिधर जिधर से हमें सुन रहे हैं। आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का, और उसके साथ साथ इन खूबसूरत समातों का बेहद शुक्रिया। आज हम सवाल कर रहे हैं, आज का हमारा मौजू है, मौजू सुखन है कि बज़ाहिर बुरे लोग ही कामयाब क्यों नजर आते हैं। ये सवाल भी है, ये एक स्टेटमेंट भी है, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, आप इसकी वजह भी बता सकते हैं। तो आइएगा बताइएगा कि क्या ऐसा है भी कि नहीं है। लेकिन अक्सर हम कहते हैं, अक्सर हम अमूमी तौर पे इस किस्म के बोल बोलते हैं कि यार जो बंदा शातिर है ना, जिस बंदे को गेम करनी आती है, जो बंदा मैनिपुलेटर होता है, वो ही कहीं ना कहीं कामयाब होता है। तो आइएगा बताइएगा, आपके फोन्स, फोन कॉल्स और मैसेजेस मैं ले रहा हूँ। एक और गाने की तरफ बढ़ेंगे हम, और बातचीत के सिलसिलों को दोबारा जोड़ेंगे। सुनते रहें, साथ साथ रहें। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं।

ओके जी, वेलकम बैक। 11:20 हुए हैं, 40 मिनट आपके और हमारे मजीद साथ में अभी रहते हैं। और अभी बड़ा वक्त है भाई, वैसे वक्त पता नहीं चलता, कभी कभी अचानक से इसको पर लग जाते हैं और कभी कभी ये गुजरने का नाम ही नहीं लेता। कभी कभी हम चाहते हैं कि ये वक्त गुजरे, ये वक्त तय हो, लेकिन कुछ कर लें वक्त गुजरने का नाम नहीं लेता। और कभी कभी जब हम चाहते हैं कि ये वक्त जरा थम जाए, ये वक्त अपनी रफ्तार कम कर ले, ये वक्त कुछ तो ठहर जाए, लेकिन ये वक्त नहीं रुकता, बल्कि पर लग जाते हैं इसको। इतनी तेजी से गुजरता है। अच्छा वक्त हो तो ऐसे चुटकी बजाते गुजर जाता है, और अगर बुरा वक्त चल रहा हो तो गुजरने का नाम नहीं लेता। कैसे कर लेते हैं यार, ये जो वक्त है किसी धूप छाओं के खेल सा, इसे देखते इसे झेलते मेरा सारा वक्त निकल गया। वो जो हाथ से तेरे हाथ तक, वो जो हाथ भर का था फासला, कई मौसमों में बदल गया। आपके कुछ मैसेजेस हैं, उनको देखते हैं। हमारे साथ महाजबीन है, कहती हैं ज़िया साहब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जैसे सारी दुनिया खूबसूरत है, सब पॉजिटिव सोच रखते हैं, सब अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं, फिर कौन है जो सही नहीं, नेगेटिव सोचता है और कौन है जो ज़्यादा ज्यादती कर रहा है, कोई एडमिट करता है? नो वन एडमिट तो कोई भी नहीं करेगा, लेकिन अगर हम अपनी आंखें खोल लें, हम थोड़ा अपने जहन को इसकी सही प्रोसेसिंग में डाल दें, हम अपने हवासे खमसा का इस्तेमाल करते हुए, सही इस्तेमाल करते हुए थोड़ा गौर व फिक्र करने लग जाएं, तो हम बहुत सारे नतीजों तक पहुंच सकते हैं। हमें मालूम हो सकता है कि ये जो हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन से कॉजेज हैं। कभी कभी चीजों को समझ लेने से ना आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन्स, बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। जरूरी नहीं होता कि कुछ चीजों को आप सॉल्व कर लें, कभी कभी सॉल्यूशंस बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन कुछ चीजों को समझ लेना, उनका इदराक हो जाना, ये भी बड़ी बात होती है कि ऐसा क्यों है। कभी कभी अगर हमारे वो वाय क्लियर हो जाए ना, तो हमारी जिंदगी की बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, फिर हमें अफसोस नहीं होते, गैर जरूरी अफसोस नहीं होते, फिर हमें गैर जरूरी डिप्रेशन और एंजाइटीज नहीं होती, फिर हम कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में थोड़ा बेहतर अंदाज में खुश रह सकते हैं। जब हमें यह नहीं पता होता ना कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ ही, ऐसा क्यों हुआ, फलाना इतना अच्छा है, फलाना इतना खुश है, फलाने को ये मिल गया, फलाने को वो मिल गया, उसके पास ये नेमत है, उसके पास वो नेमत है, मैं ही महरूम क्यों हूं, ये क्यों बड़े काम बिगाड़ती है, ये क्यों ही है जो आपकी बेसुकूनी की सबसे बड़ी वजह होती है। इस क्यों के अगर जवाबात मिल जाएं, अगर हमें इन क्यों के इदराक हो जाएं, तो यकीन जानिए जरूरी नहीं है कि मसले हल हों, सिर्फ वो क्यों क्लियर हो जाए ना, तो बड़ा कुछ ठीक हो सकता है। हमारे मौजूआत, हमारे टॉपिक्स, इनके ऊपर बात गुफ्तगु, इनके भी मकसद कभी कभी यही होते हैं कि ये जो वाइज हैं, ये जो क्यों हैं, कहीं ना कहीं हम इनको एड्रेस करें। कभी कभी हमें यूं लगता है कि शायद सब कुछ हमारे साथ ही हो रहा है, शायद दुनिया की सारी कमबख्तियों का मरकज हम ही हैं, शायद दुनिया के सबसे बदबख्त और बदकिस्मत इंसान हम ही हैं। कभी कभी हमें यूं महसूस होता है,
कभी कभी जिंदगी की ऐसी स्टेजेस आती हैं कि हमें लगता है कि यार ये सब कुछ हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब आप उस क्यों के पीछे भागते हैं ना, तो आपकी बहुत सारे जो मिथ्स हैं वो क्लियर होते हैं। आपको मालूम होता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप तन्हा नहीं हैं। सिर्फ आपको ही ऐसा महसूस नहीं होता कि आपके साथ ऐसा होता है, दुनिया में और भी लोग हैं जिनको बिल्कुल सेम ऐसे ही महसूस होता है। आप जब सिस्टम को समझने लगते हैं, इस दुनिया के सिस्टम को समझने लगते हैं, और आपको कहीं ना कहीं इदराक हो जाता है कि कवानीन कैसे चलते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तसल्ली होती है, कहीं ना कहीं आसरा होता है। आप एक सफर पर निकलते हैं और सफर में तेज धूप होती है, सड़क बड़ी बेतरतीब सी होती है, हमवार नहीं होती, रास्ते में दुश्वारियां आती हैं, मामलात खराब होते हैं, कभी तबीयत खराब होती है तो कभी टायर पंक्चर हो जाता है, तो कभी पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो कभी आगे नाका लगा होता है, कभी रोड ब्लॉक होती है, या कभी मौसम खराब हो जाता है। अगर आप बिल्कुल बगैर सोचे समझे किसी सफर पर निकलेंगे और आपके साथ ये सब कुछ दरपेश हो जाए, और फिर आप सोचें कि यार ऐसा क्यों हुआ, तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जहन बना के निकलें घर से कि यार मैं अगर घर से निकल रहा हूं तो रास्ते में पेट्रोल खत्म हो सकता है, रास्ते में बाइक पंचर हो सकती है, गाड़ी खराब हो सकती है, रास्ते में हमें ट्रैफिक जैम मिल सकता है, इशारे बंद मिल सकते हैं, मुझे ताखीर हो सकती है, अगर आपको मालूम हो, आपको पता हो कि सफर में इस किस्म के मामलात होते ही होते हैं, हो जाते हैं, आपने एहतियात करनी है, आपने इनसे बचना है, लेकिन फिर भी ये चीजें मुमकिनात में से एक हैं, तो फिर अगर आपके एक घंटे का सफर अगर डेढ़ घंटे का हो जाता है ना, तो आप इतने ज्यादा परेशान नहीं होते कि यार देखो मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा लग गया, यार देखो रास्ते में मेरा पेट्रोल खत्म हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, रास्ते में मेरी तबीयत कैसे खराब होगी। कुछ चीजें प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। जब आप किसी प्रोसेस में होते हैं, जब आप किसी मंजिल को चल रहे होते हैं, तो रास्ते में कुछ सफर के तकाजे तो होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ ऐसे कुछ वैसे, बहरहाल उनको लेके चलना होता है, उनको जहन में रख के चलना होता है। जैन अली कहते हैं कि सर गुजरात भी गया था इसीलिए, पर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पता नहीं किसी ने तावीज़ करवा दिया है, अल्लाह की कोई आजमाइश है, वेरी सैड। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला आपके लिए फटाफट से आपके तमाम रास्तों को खोले, आसानियाँ फरमाएँ, दुआ ही कर सकते हैं। अब हम माज़ अली हमारे साथ हैं, सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ, मैं माज़ अली हूँ पिशावर से। ओके जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जुगनू जूनियर कहते हैं कि मौज साहिल से मिलो या माहे कामिल से मिलो, सबसे मिलाओ तो एक बार मेरे दिल से मिलो, दिले बर्बाद ने किया टूट के चाहा है तुम्हें, किस कदर प्यार से मरमर के तराशा है तुम्हें, जब से देखा है उसी शौक से देखा है, सर झुकाया है खुदा माना है पूजा है तुम्हें, रंगो इशरत से मिलो, ऐश और राहत से मिलो, नूर और निखत से मिलो, सबसे फुर्सत से मिलो, सबसे मिलाओ तो एक बार मेरे दिल से मिलो। क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत नज़्म भेजी आपने जुगनू, थैंक यू सो मच। 4471 पे कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, और अब्दुलरहमान हैं, अब्दुलरहमान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल नूर हाशमी रिवाज गार्डन से कहते हैं कि ज़िया जी आदाब, शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। 11:30 हुए चाहते हैं, आधा घंटा है आपके और हमारे साथ में। मेरा नाम ज़ियानजुम है, आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों लगता है कि बज़ाहिर, रहमान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल नूर हाशमी रिवाज गार्डन से कहते हैं कि ज़िया जी आदाब, शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं।
11:30 हुए, चाहते हैं आधा घंटा है आपके और

0: या एग्री करना चाहें डिसएग्री करना चाहें, आइएगा बात करते हैं, बात करेंगे तो बात बनेगी। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। और कॉल ड्रॉप हो गई। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जानिम साहब, आपको और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलमान भट बोल रहा हूँ, इस्लामाबाद लाहौर से।
0: वालेकुम सलाम भट साहब, इतनी जल्दी में क्यों है
1: जी,
0: इतनी जल्दी में अफरा तफरी में क्यों है, क्या हुआ है?
1: मैं नहीं जल्दी में आता, मैं जब भी फोन करता हूँ ना वो कहते हैं छोटी कॉल किया करें, मैं फिर इसलिए।
0: अच्छा अच्छा, मैंने कहा एकदम जल्दी जल्दी आप कह रहे हैं कि मैं फटाफट ही बोल दूं जो बोलना
1: है। आप लोगों की तो बातें इतनी अच्छी होती हैं, यकीन करें कोई और कोई जो होना रहा मैं तो दो दो घंटे आपसे बात कर सकता हूँ, मजा आता है।
0: क्या
1: जो जो आपने कहा है ना, यकीन करें ये मैंने खुद बड़ा हैरान हूँ कि लोग कई माशरे में हम देखते हैं इतने इतने इज्जतदार लोग होते हैं और वो जुल्म कर रहे होते हैं, जिन पर जुल्म हुआ होता है उनसे पूछे, सांस लेना मुश्किल की होती है उनकी। ये बड़े मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, और मैंने कई लोगों को आदत देखी है वो अपने तल्लुकात बनाने के लिए ना दूसरों की, यानी कि मेरे बारे में वो ना किसी को कह देंगे जी मैंने कोई बात छोटी सी की है ना उसको बढ़ा के आगे बता देंगे, कि अपने तल्लुकात बने रहे दूसरों के तल्लुकात खराब कर रहे। ऐसे लोग भी होते हैं रिश्तेदारों में या दोस्तों में, और बहुत जुल्म ही है। अब ये आप देख रहे हैं कई लोग होते हैं जो पैसे वाले बहुत ज्यादा इतनी बड़ी उम्र में जाके छोटी छोटी बच्चियों से शादी करते हैं, वो मजबूरी का फायदा उठाते हैं। जो गरीब सी बच्ची होती है वो बेचारे अपनी बच्ची को नहीं ब्याह सकता, तो वो बंदा 80 साल का है वो सुनने में जो बातें आती हैं उससे 15 साल की 20 साल की, ये जुल्म ही है मेरे साथ। वो पैसे की जरूरत भी होता है तो ये, हालांकि उस बच्ची का हक नहीं कि उसे को उसका कोई हम उम्र के साथ उसकी शादी की जाए। इस तरह और बड़ी बातें हैं, कई लोग फितने होते हैं जो अंदर से, वो अंदर से खतरनाक होते हैं जो बिगाड़ पैदा करते हैं माशरे में। जो मेरा मतलब आप कुछ सोने जैसी भी बात करेंगे ना वो उस बात को उल्ट बताएंगे आगे जाके आपके मिलने वालों को, तो ये खतरनाक लोग होते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। बात वो होनी चाहिए कि कोई मिलाने वाली बात होनी चाहिए, एक दूसरे को मिलाने वाली, खानदानों को मिलाने वाली, कोई लड़े हुए उनको आपस में मिला दो, ऐसी बातें होनी चाहिए। और आपकी बातें बड़ी अच्छी होती हैं, जो आप कंबाइन प्रोग्राम करते हैं वो भी बड़ा मजा आता है, और आपका अलहदा जो होता है वो भी मैं बड़े गौर से सुनता हूँ आपका प्रोग्राम।
0: भट साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया।
1: आपको सिर्फ तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी दे, बस बातें मेरी इतनी इलम वाली नहीं होती क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू,
1: अस्सलाम
0: वालेकुम। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, अगर आप कम अक्ल हैं, अगर आपको बात नहीं करना आती, अगर आप समझते हैं कि दूसरे लोग आपसे ज्यादा समझदार हैं, तो ये सब कुछ कहने का मौका दूसरों को दिया कीजिए, अपने मुतल्लिक खुद से कभी भी ये मत कहा करें। अपने मुतल्लिक ऐसे बोल खुद नहीं बोलने चाहिए, ये काम दूसरों की जिम्मेदारी होती है, लोगों का काम होता है कि वो आपके मुतल्लिक ही सब कुछ बोलें। तो आप खुद को क्यों कहते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इतनी बातें नहीं आती, मुझे ये नहीं आता तो मुझे वो नहीं आता। बस अपनी बात कह दिया करें जो दिल में आए, जो ठीक लगे, बाकी दूसरों पे छोड़ दिया करें। अपने मुतल्लिक नहीं ऐसे कहते होते, खुद को नहीं अंडर एस्टिमेट करते होते, और अगर कभी कहना भी हो तो इस तरह आके पब्लिकली ओपन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं कहते होते। ठीक है मेरे भाई, ये तो लोगों का काम है, लोगों को करने देना। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं?
2: माशाल्लाह जिया भाई, हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा स्वाद। मैंने दिल से मिलाया और कॉल मिल गई, परवेज अख्तर इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ।
0: परवेज साहब क्या कहना चाहेंगे?
2: और बस आपकी बातें सुन रहा था तो मेन चीज ये है कि जो मेरे इस वक्त दिल में मैं सोच रहा हूँ ना दिमाग में, शायद किसी सुनने वाले के दिल में भी ये बात आ जाए, और दो में याद रखना, چار باتیں ہمیں ہمارے ذہن میں دل میں ہونی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے علم میں، اور جو ہم بول رہے ہیں وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، ہماری زندگی کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔

0: और नंबर दो, इंसान दिल को अंदर से बिल्कुल साफ कर ले, नियत साफ कर ले। तो मैं आपके बारे में कभी ऐसा नहीं कर सकता कि जिया भाई ने कोठी कैसे बना ली, इनके पास गाड़ी कैसे आ गई। और मेरे दिल सारा दारोमदार अंदर दिल और नियत से होता है। आपका दिल साफ होगा तो आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकेंगे। जब मैं आपके दिल में खोट होगी, दिल सही नहीं होगा, तो वो मुख्तलिफ बातें होती रहती हैं, दूसरों के खिलाफ बंदा बातें कर रहा
1: है। जो आपने बात की ना, जिया भाई ने कोठी बना ली,
0: हाँ,
1: गाड़ी खरीद, मुझे ये सुन के मजा बहुत आया, खुशी बहुत हुई है। मैंने
0: ये भी होना चाहिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो खुद अमल करो दूसरों को अल्लाह आपको और दे सर, खुश होना चाहिए दूसरे रिश्तेदारों को देख के। उसके बारे जब सर हम दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारे लिए खुद मुश्किलें आती हैं, मुश्किलें परेशानियां हमारे ऊपर हम खुद करते रहते हैं, जो हमारा किरदार होता है ना। इस कसम से 7-8 क्लास पढ़ा हूँ सर। तो इंसान सबसे पहले यह कि अपने आप को अंदर से बिल्कुल साफ कर ले, अल्लाह के भरोसे पे छोड़ ले, कभी दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचे। जब दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे तो आपके घरों में टेंशन आएगी, आपके जो है ना इंतजार होगा, आप जो है ना खुद वो टेंशन का शिकार हो जाएंगे। ये मेन चीज है कि दिल को अंदर से बिल्कुल साफ कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं दिल से, दिल है इंसान का साफ होगा ना। देखे सर, ईमान किसी सत्य दुकान से नहीं मिलता, इंसान दिल के अंदर खुद बनाते हैं।
1: क्या बात, तो क्या बात,
0: माशाल्लाह जी, आपसे बात होती रहती है, यकीन करें आपकी अपनी लोगों की अच्छी बातें हैं, आप लोगों से रेडियो से हमें मोहब्बत है और बहुत कुछ सुनने को मिलता है सर।
1: बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।
0: सबको दुआ में याद रखी अल्लाह,
1: जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब?
1: वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
2: जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मजे मजे की कॉल आ रही है, मजा आ रहा है।
1: मजा आ रहा है ना?
2: हाँ, टॉपिक मजे का, बहुत ही मजे का।
1: मीठा ज्यादा तो नहीं हो गया?
2: नहीं नहीं, मुनासिब इतना तो होना चाहिए।
1: अच्छा। फीसद आवाम को हमेशा से इंतजार रहता है अनिल आपा का। हर कॉलर, हर मैसेज करने वाला आके कहता है कि बस अनिल आपा का इंतजार है, तो वो आ गई हैं और अब छाने वाली हैं, और अब वो अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगी और वो मौजू के ऊपर सेर हासिल गुफ्तगू करेंगी और क्या क्या वो हमारे जहन के दरीचों को खोलेंगी कि वो अब हम रेडी स्टडी 1 2 3 गो करते हैं। अनिला जी, माइक हमने आपको दिया, आप कह दें जो आपने कहना है, आप बता दें जो आपने बताना है, आप सुना दें जो सुनाना चाहते हैं, आपने जो दिल, जितनी भी दिल में बातें हैं ना, वो आज आपने कह देनी है। आज आपने पॉजिटिविटी और मोटिवेशन और मैं कहता हूँ कि छक्के जुड़ा देने हैं आपने।
2: इतनी सारी बातें आपने कह दी और मैं कितने बोलना है?
1: जितने सुनने वाले हैं किताबें कापियां पेंसिलें निकाल लें, नोट्स बना लें, अनिला आप ही बोलने वाली है, अनिला आप ही अब गुफ्तगू करेंगी, और जब गुफ्तगू करेंगी तो फिर ओहो हो, ये माइक आपका हुआ, मौजू के ऊपर अब गुफ्तगू करने वाली हैं अनिला जी। जी हाँ जी
2: जी, सबसे पहले तो मैं हमारी बड़ी अच्छी कॉलर है रिमशा, उसको मुबारक दूंगी, उसकी शादी हो गई है, अल्लाह ताला इनकी जोड़ी को सलामत रखे, ढेर खुशियां दे, और आने वाले जितने आए और जो आ रहे हैं उन सबके लिए बहुत सी दुआएं हैं इस्लाम में। और दूसरी बात, मेरे बेचारे असद भाई के साथ तो बहुत ही गलत हो गया। असद भाई इतना एतबार नहीं करना चाहिए हर किसी तो, यहाँ पे बंदे की अपनी थोड़ी सी वो हो जाती है ना।
1: अच्छा, आपने असद भाई का, मैं आरजे डॉग समझने लग गया था, फिर मुझे याद आया कि नहीं वो जिला लाहौर वाले। वो नहीं किसी को अपना एटीएम देते कि मैंने 2000 रुपए काट दे,
2: समझदार है वो। अच्छा। मुझे जब झारखंड के प्रोग्राम में जीत जीत के मिलता है ना, मैं इधर उधर भेज देती हूँ।
1: क्या बात है आपकी, नाजरीन और हाजरीन लिख लें कि जब आपके पास पैसा आए तो बांट दें, ये एक बड़ा तो सुनहरी सुनहरी जो है ना एक अमल बताया है अनिला जी ने, लिख लें।
2: जब मुझे बड़ा शौक है गेमों में आने का, जीतने का, खेलने का, और जब मैं जीत जाऊँ तो मेरी कोशिश होती है मैं किसी के काम भी आ।
1: अच्छा,
2: तो मैं वो इधर उधर।
1: अनिला जी, फिर आप गेम्स खेलती हैं?
2: हाँ खेलती हूँ ना अक्सर, लेकिन अभी तो मैं ये

0: ये जो
1: कहते हैं कि
0: कामयाबी,
1: रिश्तों में अगर भरोसा और मोबाइल में अगर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम्स खेलने लग जाते हैं।
0: हाँ जी, वो फिर वो सबको जरूरी होता है उनके उनकी मोटिवेशन के लिए,
1: ठीक
0: है
1: है।
0: ना?
1: आप
0: अगर
1: भी
0: वो ना
1: खेलती हैं
0: खेलने को
1: स्नेक वाली
0: लेगा
1: गेम?
0: ना बहुत दफा खेलिए, कई बार उत्तों थल डिगे ड्रूम
1: ठीक है, यानी आप भी सांप वाली गेम
0: सीखता भी तो
1: खेलते हो
0: बंदा,
1: तुझे 33 साल
0: आओ दे सांप वाली गेम खेल खेल के तो बंदा सीखता ना, बार बार नीचे
1: वाह
0: ऊपर नीचे ऊपर,
1: क्या बात है।
0: अगेन अगेन अगेन, ट्राई ट्राई अगेन।
1: नाजरीन और हाजरीन नोट कर लें आप, क्या खूबसूरत बात की है नीला जी ने।
0: बहुत खूबसूरत बात की है, इन्होंने मैंने टॉपिक पे नहीं गल करन देनी है, ये नहीं चाहते कि मैं करा
1: नहीं मैं तो चाहना तुसी गल करो, गल करो, तुसी गल करो, तुसी गल करो, तुसी
0: अब पिछली दफा मुझे भूल गया, वो मुझे याद आया, वो आपके वो जो दोस्त है जिन्होंने आपका बीजीएम बनाया, उनकी बर्थडे भी थी और मैं आपसे बातें करते करते उनको विश करना भूल गई, वेरी सॉरी।
1: बेचारा अच्छा आदमी है,
0: जीते रहे, खुश
1: उसको
0: रहे,
1: मैं
0: अल्लाह उन्हें
1: कहूंगा,
0: सलामत रखे,
1: मैं उनको
0: है ना?
1: कहूंगा कि
0: हाँ
1: रेडियो की एक मारूफ पर्सनालिटी
0: ओए कौन है?
1: अनिला जी ने आपको
0: अच्छा, अदाबर से अदाबर,
1: जी बाबा आज मौजू पे आ जाए।
0: शुक्रिया। हाँ जी, तो मैं आ रही थी कामयाबी की तरफ। हर बंदा अपने ऐनक से देखता ना कामयाबी को, अपनी मर्जी से वो
1: ये आपने एनको
0: जाता
1: वालों को
0: था।
1: टारगेट किया, देख लें मैं इस बात को, कोई मतलब
0: लेकिन लेकिन लेकिन
1: ये पहले ही मुझे लोग एनकू कह के छेड़ते हैं। लोगों ने मेरी निशानी बनाई है, वो एनक वाले भाई नहीं गए, उन्होंने कोल जाके जरा बैठो तुसी, असी आ रहे
0: शुक्र
1: हैं।
0: करो ऐनक वाला जीन नहीं कर,
1: कहने ने ना फिर लोग ये भी कहते हैं वो जाओ एनक, वो मुंडा नहीं आया सी एनक वाला, वो जेड़ा भाई है एनक वाला ओदे कोल जा।
0: ना करो, वो पर्सनालिटी कैसे अच्छी लगती है, आप पे सूट करती है माशाल्लाह। तो
1: हाय ऐसे ही
0: बात
1: कहते
0: ये
1: हैं,
0: कि
1: शुरू शुरू में सारे ऐसे ही कहते होते हैं।
0: नहीं गुड्डू, मैं एंड तक ऐसे ही कहूंगी, फिक्र ना करो।
1: अच्छा फिर अपनी अपनी
0: तो
1: एनकों से देखते हैं लोग, वाह क्या
0: हाँ
1: बात है।
0: जी, अपनी अपनी ऐनक से देखते हैं ना जिंदगी को। कुछ लोग तो सिर्फ कहे कि रुख देख के कामयाबी के पीछे दौड़ते रहते हैं, ऐसे भी तो होता है। तो कामयाबी हर अब कोई अपनी मर्जी से अपने मकसद के लिए हासिल करने के लिए दौड़ लगाता है, तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें ये तो नहीं होता कि रिश्तों को छोड़ दें, उसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम धोखे देने शुरू कर दें, उसका मतलब ये तो नहीं होता कि बुरे काम या बुरे अमल या बुरी चीजों से या बुरी हरकतों से हम आगे पहुंचेंगे और सॉरी कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो इस तरह की कामयाबी तो फिर वक्त ही होती है ना, जैसे
1: बिल्कुल
0: सही जो
1: ठीक,
0: कामयाबी है उसको हासिल करने के लिए तो मेहनत तो सबसे पहले चीज है,
1: बिल्कुल
0: और
1: ठीक,
0: ईमानदारी और
1: बिल्कुल
0: पुख्ता
1: ठीक,
0: यकीन अल्लाह पे रखते हुए तो फिर इंसान मेहनत करते तो फिर कामयाबी मिलती है। और रहेगी बात ये जो बुरे लोग जो आगे आ जाते हैं, आजकल आप देखिए ना बड़ा इस तरह का बहुत कुछ हो रहा है, डिग्री कोई होती है, मास्टर्स किसी ने किया होता है, काम कोई मतलब पढ़ाई कोई की होती है और काम कोई कर रहे होते हैं, चल तो स्किल्स पे रहा होता है आजकल सब ज्यादातर, मैट्रिक पास लड़का बड़ी अच्छी जगह पे पोस्ट जॉब पे बैठा होता है, ये भी सब चल रहा होता है यू नो। तो ये अच्छे बुरे लोग सभी आगे आ रहे होते हैं, मगर बुरे की वो कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो काट की आंडी कब तक चढ़ेगी वाली बातें हो जाती है ना। तो बुरे लोग जो आगे आते हैं किसी ना किसी तरह से कामयाब होके एक ना एक दिन आके तो फिर वही सांप वाली गेम शुरू हो जाती है ना फिर।
1: सुन लिया लोगो
0: सोच समझ
1: लोगो,
0: के
1: मैं ना कहता था कि कापियां पेंसिलें निकाल लो।
0: आहो
1: अनिला जी
0: नीला,
1: बहुत शुक्रिया, आपने बहुत फ्रूटफुल बातें की हैं, थैंक यू
0: थैंक
1: सो
0: यू
1: मच।
0: सो मच, आपने बहुत मजे की बातें की, आपने बहुत हंसाया, और आपके लिए स्पेशली बड़ी दुआ होती है कि
1: जी
0: अल्लाह
1: जी
0: ताला आपको सेहत सलामती वाली जिंदगी दे, सारी बीमारी तकलीफें परेशानियां दूर करे,
1: आमीन
0: और
1: आमीन,
0: आपको अल्लाह ताला खुशबाश रखे और खूब अच्छी जिंदगी दे। बहुत
1: बहुत
0: थैंक
1: शुक्रिया, थैंक यू सो मच,
0: यू, और मेरे
1: इंशाल्लाह
0: रिश्ते बहन भाई आते हैं उन सबके लिए बहुत सी दुआएं, सलाम प्यार, और आपके लिए भी थैंक यू सो
1: थैंक यू
0: मच, अल्लाह
1: थैंक यू
0: हाफिज।
1: थैंक यू।
2: ऐसे

ओके जी, वेलकम बैक। 11 बज के तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं और आपका हमारा साथ 12 बजे तक रहने वाला था। आज हम बात कर रहे थे कि वो लोग जो हमें ऐसा लगता है कि जो लोग बुरे हैं या बज़ाहिर बेईमान लोग हैं, वही लोग कामयाब होते हैं, वही लोग आगे बढ़ पाते हैं, वही लोग इज़्ज़त मुकाम और मर्तबा हासिल करते हैं, और जो सीधे सीधे लोग होते हैं, जो शरीफ शरीफ लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, वो हमेशा धोखा खाते हैं, वो हमेशा मैनिपुलेट होते हैं। इसकी मिसाल एक यूं भी है कि अभी कुछ देर पहले हमें एक कॉल आई और उसमें असद ने कहा कि मैंने एतबार किया। मैं तो सीधा सीधा चल रहा था कि एक बंदे पे मैंने एतबार किया कि यार मुझे ATM से पैसे निकाल दो, तो वो शख्स 5,000 की पट्टी लगा के चला गया मुझे। तो लोग ऐसे लूटते हैं और सीधा बंदा हमेशा बेवकूफ़ बनता है, सीधे बंदे के हाथ में हमेशा धोखा ही आता है। अमूमी तौर पे ये एक मिथ सी बनी हुई है। इसके ऊपर आप सबने बहुत सारी अच्छी राय दी, बहुत अच्छे कीमती कमेंट्स किए। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं एक बड़ी आपको वजह बताऊं। अभी कुछ देर पहले आपने हमें एक मैसेज आया महाजबीन का, और महाजबीन कहती हैं कि ये क्यों तो अल्लाह से गिला है, नाशुक्री है, बदनसीबी है। नहीं, क्यों और क्यों पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्यों कर रहे हैं। एक होती है गिले और शिकवे वाली क्यों, कि या अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ।

इसमें गिला आ जाता है, इसमें शिकवा आ जाता है, इसमें नाशुक्री आ जाती है, इसमें वाकई बदनसीबी आती है। हम इस क्यों की बात नहीं कर रहे, हम इस वाए की बात नहीं कर रहे, हम क्यों उस वाले क्यों की बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर हम वजह तलाशते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हम असद की ही मिसाल ले लें। असद कहता है कि मैं एटीएम गया और वहां पे जाके मैंने एक अनजाने शख्स पे एतबार करके उसको कहा कि मुझे एटीएम से पैसे निकाल के दे दो, 2,000 रुपये निकालने थे, वो 5,000-7,000 रुपये निकाल के चला गया, 5,000 उसने अपनी जेब में रखे, 2,000 मुझे दिए और चला गया। अब यहाँ पे दो क्यों हैं, एक ये क्यों है कि आप गिला करो, शिकवा करो रब से कि या अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो एतबार किया, मैंने तो भरोसा किया तेरी मखलूक पे, तेरे बंदों पे, लेकिन वो मुझे धोखा दे गए। दूसरी क्यों ये है कि हम वजह तलाश करें कि ऐसा क्यों हुआ। तो अगर हम उसकी वजह तलाश करेंगे ना, तो वजह में हमें यही मालूम होगा कि हमसे ही बेवकूफ़ी हुई, कि हम एक ऐसे शख्स को जिसको हम देख भी नहीं पा रहे, जिसकी हमें कोई निशानी नहीं मालूम, और हम उस पर एतबार करके उसके ऊपर अपने फाइनेंशियल्स हमने उसको दे दिए, अपनी क्रेडेंशियल्स उसको दे दिए। वो एटीएम लेके जा भी सकता था, वो अगर इसमें ज़्यादा पैसे होते तो उससे ज़्यादा पैसे भी निकलवा सकता था। हम क्योंकि मोहताज थे, हम क्योंकि उस वक्त उस पोजीशन में नहीं थे, तो हमें सिवाय एतबार करने के और कुछ नहीं होना था। तो हम अगर क्यों वो वाला तलाश करें कि इसकी वजह क्या हुई, तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं, हम बहुत सारे डूज और डोंट्स को एलोकेट कर सकते हैं कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना। ये तायुन बड़ा ज़रूरी है कि क्या करने वाला काम है और क्या नहीं करने वाला काम है। बहरहाल जो लोग इस तरह से किसी को धोखा देते हैं, किसी के कंधों पर, किसी के सर पर, किसी की गर्दन पर पांव रख के आगे बढ़ते हैं, तो यकीन जानिए वो बज़ाहिर तो कुछ चीज़ों को पा लेते हैं, बज़ाहिर तो वो कुछ मर्तबों को भी हासिल कर लेते हैं, बज़ाहिर तो उनकी कुछ हैसियत तो बन जाती है, लेकिन वो बड़े अनसर्टेनिटी का शिकार रहते हैं। एक बात बताऊं आपको, जो शख्स खुद बेईमान होता है ना, जो शख्स खुद काबिले भरोसा नहीं होता, वो खुद भी सारी जिंदगी किसी पर भरोसा नहीं कर पाता, और ये बहुत बड़ा कर्ज होता है कि आप किसी पर भरोसा ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगता है कि सारी दुनिया जो है वो ऐसी ही है जैसा मैं हूं। क्योंकि आपका जहां पे भी दाव लगता है, जहां पे भी आपको मौका मिलता है, आप दो नंबर ही लगा देते हो। तो दो नंबर शख्स के लिए सारी दुनिया भी दो नंबर होती है। अभी कुछ देर पहले तारिक भाई आए और तारिक भाई ने कहा कि मुझे आज तक जितने भी लोग मिले हैं ना, जितने भी कामयाब लोग मिले हैं, मैंने देखा है कि वो अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी तवज्जो से ही आगे बढ़े हैं। ये देखने का नज़रिया होता है। आप जिस तरह से दुनिया को देखते हैं ना, दुनिया आपको वैसी ही नज़र आना शुरू हो जाती है। अगर आप देखेंगे ना कि बेईमान लोग आगे बढ़ रहे हैं, बेईमान लोग ओहदों पे, मनसबों पे बैठे हुए हैं, तो यकीन जानिए आप जहाँ पे भी नज़र दौड़ाएंगे ना, आपको हर शख्स बेईमान ही नज़र आएगा। लेकिन अगर आप अपनी नज़र का जाविया बदलेंगे, आप अच्छे लोगों को तलाशेंगे, बल्कि अच्छे लोगों को तलाशने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम जैसे होते हैं ना, हमारी रूह जैसी होती है, हमारा खमीर जैसा होता है, हम अंदर से जैसे होते हैं, यकीन जानिए हमें लोग भी वैसे ही मिलते हैं। हमारी ज़िंदगी में वही लोग ठहरते हैं, वही लोग अपना इम्पैक्ट क्रिएट करके जाते हैं, जैसे हम खुद होते हैं, जैसे हमारा खमीर होता है। हम अगर बेईमान होंगे ना, तो हमें हमेशा जगह जगह हमें बेईमान लोग मिलेंगे, और अगर हम खुद ईमानदार हैं ना, तो हमारे साथ बेईमान लोग भी ईमानदारी करके चले जाएंगे। ये यकीन जानिए देखने का नज़रिया होता है। अभी जो अनिला जी आई और उन्होंने कहा कि हर किसी की अपनी अपनी एक ऐनक होती है।

हर कोई अपनी अनक से देखता है। ये डिपेंड करता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। आपकी आंखों में लगी हुई ऐनक धोखे की ऐनक है तो हर चीज, हर शख्स, हर जगह पे आपको धोखा नजर आएगा। अगर आपकी ऐनक नेक ऐनक है तो आपको हर शख्स में कोई ना कोई नेकी, हर शख्स में कोई ना कोई अच्छाई नजर आएगी। आप अच्छे हैं ना तो आप खैर, आप हर शर में से भी खैर निकाल लेंगे। अगर आप खुद बुरे हैं ना तो आपको हर खैर में भी कोई ना कोई शर नजर आएगा। ये देखने वाले की आंख होती है बहरहाल। बातें यकीनन अभी बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारी थी। मैं आज चाह रहा था कि मैं आपकी मैक्सिमम कॉल्स लूं और मैंने कोशिश भी की कि आज मैक्सिमम कॉल्स आपकी लीं, क्योंकि अक्सर मुझसे गिला करते हैं मेरे सुनने वाले कि आप खुद ज़्यादा बोलते हैं और बोलते बोलते इतना बोलते हैं कि आप हमें प्रोग्राम में शामिल करना भूल जाते हैं। तो आज मैंने कोशिश की कि आपकी कॉल्स को, आपकी फ़ीडबैक को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करूँ। गो के भी बहुत सारी बातें हैं इसी मौजू पे जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो रह गई हैं लेकिन वक्त ख़त्म होने को आया है। लेकिन कोई बात नहीं, वक्त इस प्रोग्राम का ज़रूर ख़त्म हुआ है, लेकिन ये प्रोग्राम्स चलते रहेंगे, बातचीत के सिलसिले भी चलते रहेंगे, आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि अपने प्रोग्राम की टाइमिंग्स कंफर्म कर दें। मेरा प्रोग्राम हर मंगल को रात 12 से 2 FM 101 लाहौर पे होता है, जो कि आप नेटवर्क पे भी सुन सकते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, पिशावर, मुल्तान और सियालकोट, इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे आप सुन सकते हैं। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। अगर आप मेरे प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स सुनना चाहें तो मेरे इन प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स मेरे YouTube चैनल्स पे मौजूद होती हैं, वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। YouTube पे जाइए या Google पे जाइए, सर्च कीजिए द ज़िया अंजुम, तो यकीनन आपको मेरे तमाम सोशल हैंडल्स मिल जाएंगे, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok और दीगर IDs। तो आप YouTube रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।

अच्छा जी, इंसान ने तरक्की की है और आज हम जहाँ पे पहुँचे हैं और जहाँ तक हमें पहुँचना है उसके अंदर सिस्टम्स का बड़ा किरदार है, और हर चीज़ को में अगर हम देखें तो उसके अंदर अगर सिस्टम मौजूद है तो सिस्टम से ही बनाई हुई चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती हैं, और जहाँ जिन चीज़ों के अंदर सिस्टम्स मौजूद नहीं होते वो चीज़ें अगर कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितनी ही बेहतरीन क्यों ना चल रही हों, कुछ देर के बाद वो फ्लॉप हो जाती हैं या उनकी ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं होती। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र अगर हम कहें या इस दुनिया की तरक्की का अगर सफ़र कहें या इस इंसान की तरक्की का सफ़र कहें तो उसने सिस्टम्स जहाँ जहाँ बनाए हैं वहाँ वहाँ उसको कामयाबियाँ मिली हैं। और इंसानी ज़िंदगी का भी एक सिस्टम है कि उसने ज़िंदगी में जितनी भी खूबसूरतियाँ समेटी हैं, अपने अपने खाने पीने को, लिबास को, अपनी तमाम तर चीज़ों को बेहतर बनाया है, टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुका है कि अगर आप मेरी इस वक्त आवाज़ 700 मील दूर बैठ के भी सुन रहे हैं, 700 मील दूर भी बैठ के सुन रहे हैं, तो उसमें इंसान ने एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम के थ्रू आप मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, मैं एक माइक्रोफोन के सामने बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ और आप तक जो है वो वेव्स के थ्रू मेरी आवाज़ पहुँच रही है, और अगर ये सिस्टम ना बनाया गया होता तो शायद ये मेरा और आपका राबिता या रिश्ता ना होता। इसी तरह अगर हम फ़ोन की बात करें, इसी तरह हम अगर किसी भी चीज़ की बात करें, इसी तरह हम AI की बात करें, और जब आज हम AI तक पहुंच चुके हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सिस्टम्स के थ्रू हैं, और सिस्टम जो है वो बड़ा ज़रूरी है। इंसान पैदा होता है और फिर जो है वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, स्कूलों में जाता है, कॉलेजेस में जाता है, और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ के बाद जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आता है तो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, और उन सीखने का एक ही पर्पस होता है कि वो अपने आप को किसी मुफीद जगह के ऊपर यूटिलाइज़ करे, अपने आप को इंसानों की तरक्की के लिए आगे बढ़े और इंसान उसके लिए काम करें, वो इंसानों के लिए या इस मुआशरे के लिए या इस दुनिया के लिए काम करे। हर शख्स की यही कोशिश होती है कि मैं जो है वो बड़ा होके किसी एक अच्छे मकाम पर पहुँच जाऊँ, किसी एक अच्छी इंडस्ट्री में पहुँच जाऊँ, कुछ अच्छा कर सकूँ, कुछ अच्छा सिस्टम का हिस्सा बन सकूँ, ताकि लोग मेरे लिए काम कर सकें, मैं पैसा बनाऊँ और उस पैसे से मैं अपनी ज़िंदगी की आसाइशें खरीद सकूँ। और पैसे को अगर हम देखें अगर, तो पैसा क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है कि हम किसी दूसरे के लिए कोई वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं किसी ज़िंदगी के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर अगर हम वैल्यू ऐड करते हैं तो उसका हमें मुआवजा मिलता है, और उस मुआवजे को इस्तेमाल करके हम दूसरों को मुआवजा दे के अपने लिए अपनी ज़िंदगी की आसाइशें खरीदते हैं। जब हम सबसे पहले जो है वो अपनी तालीमी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है वो कदम रखते हैं, तो हम वहाँ जब कभी पहली नौकरी करते हैं, पहला काम करते हैं, तो जो पहले पैसे मिलते हैं हमें, जो पहली तनख्वाह मिलती है हमें, उसका एक बड़ा असर होता है, एक बड़े जज्बात होते हैं उस वक्त जब हमें वो पहली चीज़ें मिलती हैं। और जब वो पहली चीज़ें मिलती हैं तो जब वो पहली तनख्वाह या पहले पैसे या पहला

कोई भी चीज़ अगर बांटने में आपको मिली है तो उसकी जो वैल्यू होती है, शायद उस वैल्यू को आप कंपेयर नहीं कर सकते ज़िंदगी में, आप जहाँ कहीं भी पहुँच जाएँ। हम सब ने कहीं ना कहीं से आगाज़ ज़रूर किया होता है, कहीं ना कहीं से हमारी शुरुआत ज़रूर हुई होती है। कभी पहली नौकरी हमने की होती है और वहाँ से हमें तनख्वाह मिलती है, और अगर कभी हमने कोई पहली दिहाड़ी लगाई होती है और वहाँ से हमें पहली दिहाड़ी जब मिलती है, तो पहली वो कमाई जो हम कमाते हैं उसकी उसका बड़ा असर होता है और हमें वो बहुत पसंद होती है और हमारे घर वाले बड़े खुश होते हैं। तो अभी जो है वो पहले हाफ के अंदर आप मुझे बताएंगे कि जब आपने पहली कमाई की थी तो वो क्या की थी, कितनी की थी और किसको दी थी और किस तरह यूटिलाइज की थी आपने। आज की कमाई में आपसे नहीं पूछूंगा, खासकर मर्दों को कहते हैं जी कि उनसे उनकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आपकी जो पहली कमाई है वो आप मुझे बता सकते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर। दूसरे हिस्से में मैं आपसे पूछूंगा जी कि उसके लिए कुछ ऐसा है कि अभी जब मैं आ रहा था आपकी तरफ तो मैं कुछ दोस्तों के पास बैठा था और उनमें से एक दोस्त जो थे वो उनके साथ मेरी पहली मुलाकात हुई, वो इस तरह से हुई कि जो मेरे दोस्त मुझे लेके उनके पास गए थे, उन्होंने एक जो है वो खाना जो है वो हमारे एजाज़ में रखा हुआ था। जब मैं खाना खाने वहाँ उनके पास गया तो वहाँ एक और शख्स मौजूद थे और जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो जब मैंने उनको पहला उनका जो जो पहला जो मेरा इंट्रैक्शन था उसमें मैंने देखा कि उनका एक बड़ी बड़ा कद काठ और बड़ी जसामत, बड़ी बड़ी मूछें और बड़ा सा एक उनका कद था, तो मैं उनको देख के ना मुझे लगा कि यार ये ना बड़े कोई रोबदार पर्सनालिटी है और ये बड़े सीरियस होंगे और ज़िंदगी में बहुत ही चीज़ों को बड़ी डेप्थ में देख रहे होंगे और बड़े ख़तरनाक से बंदे हैं। अगर मैं उसको कंक्लूड करूँ तो मुझे वो बड़े ख़तरनाक से बंदे लगे यार, कि इन्होंने ना ज़िंदगी में बड़ी सख्त चीज़ें कर रहे होंगे। तो जब पहले तासुरात थे मेरे उनको देख के, तो मैंने उनको उसी तरह, जब आपके बारे में किसी के बारे में आपके जहन में एक नक्शा बन जाता है तो आप उसको उसी तरह ट्रीट करते हैं, उसके बारे में उस तरह ही सोचते हैं और उसकी पर्सनालिटी के मुताबिक ही आप उसके साथ बातचीत भी करते हैं और आपके जो आदात होती हैं आप उससे मुख्तलिफ जाके शायद उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब थोड़ी देर गुजरी और जब मैं उनके साथ बैठा गुफ्तगू की तो मुझे पता चला कि वो बहुत ही मासूम शख्सियत थे, इतनी मासूम शख्सियत। तो मुझे देख के लगा कि अपने चेहरे और अपने कदकाठ और अपनी पर्सनालिटी से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, बहुत ही फनी और बहुत ही मासूम से इंसान निकले। तो आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसा वाकया हुआ है कि आपने किसी के बारे में कोई राय कायम की है और जब आप उसके साथ बैठे उठे हैं और जब आपने उसके साथ वक्त गुजारा है तो आप बिल्कुल मुख्तलिफ आपने उसको पाया है, या आप गलत साबित हुए हैं, या आपने अगर किसी को बहुत मासूम जाना है और वो मासूम नहीं निकला, तो मुझे आप बता सकते हैं जी प्रोग्राम के दूसरे

0: हाँ जी जनाब, आज की क्यू लिस्ट में जी बहुत सारे गाने होंगे, मुख्तलिफ गाने होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, आप सबको सुनाऊंगा मैं। मेरे साथ रहिए, मुझे आज के भी कहते हैं। इस वक्त आपके लिए मैं प्ले करने जा रहा हूँ अली अजमत का सॉन्ग आंसू। आंसू नहीं बहाने, आंसू कभी कभार बहाने भी चाहिए, दिल का बोझ हल्का हो जाता है ना
1: तन्हा जीवन के,
0: जब आप अकेले बैठे होते हैं और आपको किसी अपने प्यारे की याद सताती है, कुछ अच्छा वक्त याद आता है तो आंसू तो गिर जाते हैं।
1: तन्हा जीवन के,
0: लेकिन आंसू हमेशा तन्हाई में ही गिराने चाहिए। किसी के सामने अगर रो पड़ते हैं ना, तो आज की दुनिया कुछ ऐसी है कि रोने वाले को मजीद रुलाती है। इस बारे में भी आज तस्करा हो रहा था कि अगर आप गिर गए ना, तो कितना बुरा वक्त आ चुका है कि लोग आपको और गिराते हैं, अपनी नजरों से भी और गिराने की कोशिश भी करते हैं। और अगर आप जिंदगी में सेट हैं और अगर आपकी जिंदगी बेहतरीन चल रही है और कहते हैं ना कि तुम्हारा पैर नहीं तरड़िया, तो लोग आपको बहुत ज्यादा इज्जत से, तकरीम से और नवाजते हैं और आपके और करीब होना चाहते हैं। चाहे आप उनको कुछ भी मत दो, चाहे आपसे कोई भी उनको फायदा ना मिल रहा हो, फिर भी वो आपके करीब होना चाहते हैं। मुआशरे की एक तल्ख हकीकत है, लेकिन क्या करें।

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने, एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे खोया हमने।

सब माया है, सबका सब माया है, हमने भी एक दिन माया हो जाना है और उस माया होने से पहले हमने कुछ अच्छा कर जाना है। फेसबुक में मेरे साथ जी हमाद खान है, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं और कह रहे हैं जी इस्लामाबाद के से आपके साथ साथ हैं हम, थैंक यू सो मच हमाद। फजल खान काकड़ मेरे साथ आ चुके हैं जी और ईगल फ्रेंड्स क्वेटा पाकिस्तान से हैं और मुझे कह रहे हैं जी कि वेलकम टू द प्रोग्राम। और फजल खान काकड़ जो है वो मेरे मॉर्निंग के प्रोग्राम में मेरे लिसनर हुआ करते थे। फजल आज रात कैसे कैसे केंज हैं केंज, खैर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। और इस्लाम गुजर मेरे साथ हैं, वो कहते हैं जी कि इस्लाम अलैकुम, ये फरमाइए कि आप लाहौर स्टेशन, लाहौर रेडियो स्टेशन कब आ रहे हैं? एक्चुअली वी आर डूइंग एन इंटर्नशिप। तो असलम को जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है वो एफएम 101 ने लिया है लाहौर स्टेशन ने और बहुत अच्छी जो है वो आपके लिए इंटर्नशिप जो है वो प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं लाहौर स्टेशन ने और बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे आपको आरजेज मिल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स मिल रहे हैं। मैं देख रहा होता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी अपडेट्स आ रही होती हैं, तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। होपफुली कि आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, हम तो आपसे सीखते हैं जनाब, हम क्या सिखाएंगे आपको, हैं इस्लाम, बस सीखते रहिए, अच्छा अच्छा सीखते रहिए और हमें सिखाते रहिए। फैसल अब्बास है मेरे साथ और मुझे कह रहे हैं जी वेलकम टू द प्रोग्राम और लाहौर से प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फैसल। माँ जबी आ चुकी हैं, सलाम कह रही हैं, वेलकम कह रही हैं और कहती हैं इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट। अरे वाह, आज वाकई बड़ी ज़बरदस्त प्लेलिस्ट बनी है।

ओके जनाब, वेलकम बैक। के भी आपके साथ हैं और 12:32 हैं, 18 जुलाई है 2026 है, 101 इंटरनेशनल आप सुन रहे हैं जी, और इस्लामाबाद के स्टूडियो से बिल्कुल बराह रास्त सुन रहे हैं। और अभी सुनने में कुछ आ रहा था, मैं भी सर्च भी कर रहा था कि पेट्रोल की जो प्राइसेज हैं, जो ऑयल की प्राइसेज हैं, वो इंक्रीज आई थिंक सो हो जाएंगी आज, और उसके बारे में बड़ा तस्करा हो रहा था। आई डोंट थिंक सो कि अभी तक तो कोई ख़बर मेरे सामने आई नहीं है, लेकिन आई थिंक सो कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि जो इस वक्त खित्ते के अंदर कशीदगी है उसकी वजह से ऑयल जो है वो आना पाकिस्तान के अंदर, और उसकी जो कमी है वो बढ़ती चली जा रही है। सो इसलिए ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन ये आज जो है वो मैं सो कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि जो इस वक्त खित्ते के अंदर कशीदगी है उसकी वजह से ऑयल जो है वो आना पाकिस्तान के अंदर, और उसकी जो कमी है वो बढ़ती

ताकि उनको भी मैं बता सकूं कि पेट्रोल में क्या क्या चीजें होती हैं। और मैं सुन के ना बड़ा शॉक हुआ कि यार क्या करना चाहिए भाई, किस तरह से अच्छे तरीके से आप पेट्रोल डलवा सकते हैं, किस तरह से आप फ्रॉड से बच सकते हैं, किस तरह से आप चोरी से बच सकते हैं। और ऐसी ऐसी चोरियां उन्होंने मुझे बताई हैं, ऐसी ऐसी चीजें वो मुझे बता रहे थे। और मैं उनको कह रहा था कि अगर आप मेरे से कॉल पे आ जाए ना तो आज हम इसके ऊपर पूरा एक सेगमेंट करते हैं ताकि लोगों का कुछ भला हो जाए। उन्होंने कहा नहीं यार, मैंने तो कॉल पे नहीं आना, मैंने अपनी जो है वो आइडेंटिटी शो नहीं करनी, लेकिन हाँ ये बातें हैं वो तुम डिस्कस कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो। उन्होंने मुझे बताया जी कि जो पेट्रोल की सबसे ज़्यादा जो चोरी होती है वो तीन जगहों पे जो है वो चोरी होती है। एक होती है कि जो ओनर होता है पेट्रोल पंप का, अगर वो ईमानदार ना हो और अगर वो चाहे चोरी करना तो वो चोरी करता है, जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो चोरी पेट्रोल पंप के ऑनर्स की जानिब से जो है वो की जाती है। और मैंने पूछा कि जी इस्लामाबाद के अंदर कितने परसेंट, अगर पिंडी इस्लामाबाद की अगर मैं रेशो लूँ तो कितने परसेंट लोग जो हैं वो पेट्रोल पंप्स के जो ऑनर्स हैं वो चोरी करते होंगे। मैंने कहा वो 10% लोग ऐसे होते होंगे कि जो जो है वो चोरी करते हैं। और उसमें बहुत से दो तीन चोरियाँ हैं। एक चोरी तो ये होती है कि कम पेट्रोल दिया जाता है, कम जो है वो कैलिब्रेशन आउट कर दी जाती है और मशीन के अंदर जो है वो आपको पॉइंट्स बिल्कुल बराबर नज़र आ रहे होते हैं, फिगर्स आपको बराबर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अगर आप ओरिजिनली पेट्रोल डालें तो वो आपको कम जो है वो मिलता है। इसके ऊपर बहुत सारे हमारे इदारे काम भी कर रहे होते हैं, HDIP भी काम कर रहा होता है, ओगरा भी उसको देख रहा होता है, वेट एंड मैयर वाले भी जो है वो उसको कुछ जो डिपार्टमेंट है उसको जो है मैयर कर रहा होता है, देख रहा होता है, लेकिन फिर भी जो है वो पेट्रोल पंप्स के ऑनर्स जो है वो कहीं ना कहीं चोरी जो है वो कर लेते हैं। तो मैंने कहा जी कैसे करते हैं, तो मैंने कहा जी उनके पास कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसमें ए एंड बी की जो है वो सेटिंग्स हुई होती है, और अगर ए जो है वो आपका आपने परफेक्टली अलाइन किया हुआ है और बी के ऊपर आपने सेटिंग रख के आप पेट्रोल दे रहे हैं, तो जैसे ही उनको पता चलता है कि हाँ यार अभी रेट बढ़ने वाला है या कुछ चेक करने वाला आ गया तो उसकी सेटिंग्स को आउट किया जाता है, बी से ए के ऊपर जो है वो ले लिया जाता है और वो कुछ बटन्स जो है वो इधर उधर करने होते हैं और आपकी सेटिंग जो है वो इधर उधर हो जाती है। तो एक तो चोरी जो है वो पेट्रोल पंप्स के ऑनर्स करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए और उसको आप जो है वो रोकना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको इदारे ही कंट्रोल करते हैं। दूसरी चोरी जो है वो पेट्रोल कम देने के अलावा जो है वो ऑयल, सस्ता ऑयल जो है वो मिक्स किया जाता है, और सस्ता ऑयल जो है मिक्स करने से उनको बहुत बेनिफिट होता है। और मुझे बता रहे थे कुछ, उन्होंने कैलकुलेशंस करके बताई कि जी मुझे जो है वो इतने परसेंट जो है वो एक लीटर के अंदर इतने पैसे जो है वो, जो मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल था, मैंने कहा जी इतने पैसे जो है वो मुझे एक लीटर में से बचते हैं, और अगर मैं इसके अंदर पेट्रोल मिक्स कर दूंगा और सस्ते वाला ऑयल जो है वो मिक्स करूंगा इसमें तो मुझे उसमें से इतने पैसे बचेंगे। तो जब मैंने उसको कैलकुलेट किया मंथ के साथ तो कैन यू बिलीव कि 2 से 3 करोड़ रुपया बनता था अगर 15,000 से 20,000 लीटर जो है वो पेट्रोल डेली सेल किया जाए। 15,000 से 20,000 के दरमियान अगर एक पेट्रोल पम्प जो है वो डेली पेट्रोल सेल करता है तो अगर उसके अंदर मिक्सिंग कर दी जाती है तो 1 से 2 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा जो है वो कमाए जा सकते हैं, जो कि बहुत सारे पेट्रोल पंप्स के लोग करते हैं। दूसरा मैंने पूछा जी कि दूसरी क्या चीज़ हो सकती है जो की जाती है, तो उन्होंने कहा जी कि ये दो बड़ी चोरियां होती हैं, लेकिन पेट्रोल पंप्स वालों को भी कोई चूना लगाता है, पता है आपको। ये बड़े मजे की स्टोरी उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा जी हमें सबसे ज्यादा चूना लगता है, और वो इस तरह लगता है कि जब हम लॉरी जो है जो ट्रक होता है वो डिपो से हम जब मंगवाते हैं अपने पेट्रोल पंप के ऊपर अनलोड करने के लिए, तो वहाँ से लेट्स सपोज हमने 15,000 लीटर या 20,000 लीटर जो है वो हमने एक ट्रक के ऊपर लोड करवाया है, तो अगर उसमें से 200 लीटर या 300 लीटर या इवन 500 लीटर भी अगर निकाल दिया जाए तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि बड़ा माइन्यूट सा फर्क होता है अगर 15-20,000 लीटर में से आप 2-300 लीटर अगर आप इधर उधर कर दें। तो मैंने कहा वो किस तरह से इधर उधर होता है, तो मैंने कहा जी होता यह है कि जो लॉरी के ड्राइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ अपने दोस्तों को बताया होता है, अपने जानने वालों को कि जी जब हम गाड़ी लेके निकलेंगे तो फलां पॉइंट के ऊपर हम कुछ देर के लिए रुकेंगे, तो वहाँ आपने ड्रम या कोई इस तरह की कोई चीज़ लेके आनी है तो आपने गाड़ी साथ लगानी है, तो हम उस गाड़ी में 200 लीटर या 300 लीटर पेट्रोल जो है वो निकाल लेंगे। कहते हैं जी वो सील जो है वो तोड़ते हैं और सील तोड़ के उसके अंदर से जो है वो 200-300 लीटर पेट्रोल जो है वो निकाल लिया जाता है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि जब वो पेट्रोल आपके पास पहुंचता है तो आपके पास भी तो पैमाना होता होगा ना जिससे आप मापते होंगे। तुमने कहा जी वो जो 200-300 लीटर है उस पे हल क्या है, तुमने कहा जी मैं ये करता हूँ कि मैं जब ट्रक वहां से निकलता है तो मैं अपने 2 लड़के साथ भेजता हूँ। पहले एक लड़का भेजा करता था और वो अपना लड़का जो है वो मेरा वहाँ से ट्रक लोड होता था और उस ट्रक के साथ बैठ के और वो फिर पंप तक आते थे और वहाँ पे अपने हम टैंकर्स के अंदर उसको ऑफलोड करते थे। लेकिन हुआ ये कि पता चला कि वो वाला लड़का भी मिल गया। ये देखे ना जो लड़का उन्होंने एम्प्लॉय कहते हैं, मैंने जो एम्प्लॉय

0: रखा था जिसने चोरी पकड़नी थी वो भी चोरों के साथ मिल गया। फिर हुआ कुछ ऐसा कि मैंने कहा कि अब मैं दो लड़के जो है वो भेजता हूँ। एक लड़का जो है वो साथ वीडियो बनाता है, और जैसे ही ट्रक निकलता है और वहां से वीडियो स्टार्ट करता है, जब ट्रक आके ऑफलोड होता है तब तक वो वीडियो ऑन रहती है, और अगर उस दौरान अगर वो एक सेकंड के लिए भी मैं कहता हूँ अगर वीडियो ऑफ हुई तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। तो इस तरह मैं रास्ते की जो चोरी है उसको रोकने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये तो जो है वो चूना लगता है जो होते हैं ऑनर्स होते हैं पेट्रोल पंप्स के उनको, और जो आम आवाम को आम जनता को चूना लगता है वो तो मैंने आपको पहले बताया, एक तो पेट्रोल कम दिया जाता है, दूसरा जो है वो कहते हैं अगर पेट्रोल पंप का ऑनर जो है वो ईमानदार है, अगर वो चोरी नहीं करता, अगर उसने कोई कैलिब्रेशंस में मसला नहीं किया हुआ या पेट्रोल पूरा देने की कोशिश करता है, वो बड़ी ईमानदारी से अपनी चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से दे रहा है, तो आगे जो लड़के होते हैं जो पेट्रोल डालने वाले होते हैं वो कहते हैं कि उनके ईमान की कोई गारंटी नहीं है। वो करते ये हैं कि जब आप आगे गाड़ी लगाते हैं, इवन अगर आप बाइक के अंदर पेट्रोल डलवा रहे हैं, और अब वो देखते हैं कि अगर आप बिजी हैं, आप किसी फ़ोन पे लगे हुए हैं या आपकी तवज्जो कहीं और है, तो वो जो उस आपसे पहले पेट्रोल डलवा के गया है तो आपने वहीं से जो है वो उसने मीटर चालू कर देना है। और अगर लेट्स सपोज आपने 10,000 का पेट्रोल डाला और पहले कोई 2,000 का डाल के गया या 1,000 का डाल के गया, तो वो जो 1,000 या 2,000 रुपये होते हैं वो सीधे की सीधे उस बंदे की जेब में चले जाते हैं, वो पेट्रोल पंप के ऑनर को भी नहीं मिलते और वो उसकी जेब में होते हैं और वो उसकी चोरी होती है। मैं कहा जी कि ज़रूर बताएं आप अपने सुनने वालों को कि जब कभी भी आप पेट्रोल डलवाएं तो आप मीटर को एक दफ़ा ज़ीरो होता हुआ ज़रूर देखें। हमेशा अक्सर आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वो नॉक करके बताते भी हैं कि जी मीटर चेक कर लें, आप ज़ीरो कर लें, तो ज़ीरो ज़रूर आपने करवाना है। अगर आपके मीटर के ऊपर कुछ फिगर्स ऑलरेडी मौजूद हैं और वहीं से आगे पेट्रोल जो है वो डाल दिया गया है, तो इसका मतलब है कि वो जो पहले वाले पैसे हैं उसका पेट्रोल नहीं डला लेकिन वो आपको पे करने पड़ेंगे। आज काफ़ी जो है वो सहर असल गुफ्तगू हुई जी पेट्रोल के हवाले से, और अल्लाह करे कि जी ये पेट्रोल के जो मसाइल हैं वो हमारे ख़त्म हो, हमारी कौम के अंदर से भी ख़त्म हो, और जो अभी इस वक्त दुनिया के ऊपर जो है वो मसाइल आए हुए हैं इन मसाइल से भी जो है वो हमारी जान छूटे, इस खत्ते में अमन आ जाए और अमन की वजह से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकें, जंग की वजह से बहुत सारे बिजनेस के हालात और बाकी हालात भी जो है वो ख़राब हैं। अल्लाह ताला आसानी करे। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, मीडिएशन की बड़ी कोशिश की, बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश की, बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, अल्लाह ताला उन कोशिशों को भी रंग लगाए, और जब अगर वो पाकिस्तान की तरफ से अगर रुक जाती जंग और अगर रुक गई आगे तो पाकिस्तान को उसके बड़े अच्छे फवायद भी मिलने हैं। खैर यार, प्रोग्राम जो है वो सीरियस होता चला जा रहा है, तो बढ़ते हैं कॉलर्स की जानिब। कॉल मुझे कर सकते हैं आप 0511111001, और मैं आपसे आज पूछ रहा हूँ कि पहली तनख्वाह मिली थी तो आपने किसको दी थी और वो कितनी तनख्वाह थी, और ये पहले हिस्से में पूछ रहा हूँ, और 1 बजे के बाद जो है वो दूसरा सवाल होगा। तो कॉलर्स आ गए हैं जी जनाब, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
0: कौन साहब बात कर रहे
1: हैं? खालिद पॉलिश वाला बोल रहा हूँ
0: जी। खालिद साहब पॉलिश में पेट्रोल डालते हैं?
1: जी सर, कई बार डलवाया सर, पेट्रोल भी डलवाया सर।
0: अच्छा, तो खालिद साहब जिंदगी में सबसे पहला काम क्या किया था आपने?
1: सर मैं सबसे पहले तो पढ़ रहा था। तो फिर मैं बचपन से मैंने ये पॉलिश का काम किया।
0: अच्छा, सबसे पहले आप पढ़ रहे थे, कितनी पढ़ी हैं आपने?
1: मैंने 8 जमातें सर।
0: 8 जमातें, 8 जमातों के बाद आपने पॉलिश का काम शुरू कर दिया, राइट?
1: जी जी सर।
0: तो पहली पहली पहली दिहाड़ी क्या मिली थी आपको पॉलिश की?
1: सर पहली दिहाड़ी जो थी सर उस वक्त 70 रुपया मिली थी सर।
0: 70 रुपया
1: 1988
0: की बात है। ओके, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, है ना खाल साहब?
1: जी जी सर, ये तो मुझे नहीं पता सर, मैंने तो आपको देखा
0: है। अच्छा,
1: आपकी बातों से ये पता लगता है कि आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं।
0: अच्छा नहीं, रंग काला है मेरा खाल साहब।
1: नहीं सर, रंग काले की बात नहीं है।
0: हाँ, धूप आजकल ज्यादा हो गई है ना, तो और काला हो गया।
1: सर आप अंदर से खूबसूरत होंगे ना तो आप सबको अच्छा लगेगा।
0: अंदर से तो बस पता नहीं अंदर से किस तरह खूबसूरत, अंदर तो गोश्त है, खून है, लोथड़े हैं, पता नहीं क्या क्या है।
1: सर दिल की बात कर रहे हैं सर, दिल जो है ना आपका साफ हो ना।
0: अच्छा,
1: तो आप बहुत खूबसूरत
0: हैं। अच्छा, थैंक यू खाल साहब।
1: अच्छी बोल रही हो तो आप बहुत खूबसूरत।
0: थैंक यू खाल साहब। बस ये लोग नहीं मानते, पता नहीं क्यों नहीं मानते मैं खूबसूरत हूँ। लोग कहते नहीं आप प्यारे नहीं है।
1: सर हर इंसान खूबसूरत है। आपको इसी बात में एक बात सुनाता हूँ सर।
0: अच्छा सुनाए।
1: मेरा एक बचपन का दोस्त था सर, रंग में जरा

0: अच्छा
1: मेरा बचपन का दोस्त फर्स्ट क्लास वाला भी था, तो मेरा बड़ा भाई था, वो मुझे कहता है यार ये क्या तुमने काला सा दोस्त बनाया हुआ है।
0: अच्छा
1: तो मैंने भाई, बड़ा भाई था मेरा, अभी वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह जन्नत में जगह दे
0: आमीन
1: सबको।
0: आमीन।
1: तो मैंने उसको बोला मैंने इसके रंग के साथ दोस्ती नहीं की है, मैंने इसके साथ दोस्ती की है।
0: अच्छा
1: तो वो कुछ अर्सा बाद फिर मेरा भाई बीमार हो गया, तो मैं हॉस्पिटल में नहीं था,
0: अच्छा
1: तो उनको कैंसर हो गया था।
0: अच्छा
1: तो ये मेरा दोस्त जो आया ना उसको पूछने के लिए भाई मेरे को, तो मेरे भाई को खून की बोतल बड़ी अच्छी जरूरत थी। तो वह उसने कहा कि जी क्या हुआ है, तो कह रहे हैं जी खून की बोतल चाहिए, उसने फटोफट दे दिया और चला गया। जब रात को काम से आया हूँ तो मेरा भाई मुझे कहता है यार वो तेरा दोस्त नहीं है मगर अजय जी, कहते यार उसने तो फोन की बोतल दी है। मुझे बड़ी हंसी आई है उस टाइम।
0: आपने कहा होगा कि खून काला नहीं है, सुर्खी है, सबका ही सुर्ख होता है
1: ना। नहीं मैंने कर, मैंने ये बोला सर, मैंने कहा ये वही मेरा काला दोस्त है। मुझे कहता है नहीं नहीं नहीं वो बहुत अच्छा है। तो आप तो कहते थे ये काला है, कहने का मकसद ये है ना सर कि लाजमी नहीं है कि खूबसूरत इंसान हो तो आप उसको खूबसूरत समझे, इंसान की नेचर अच्छी होनी चाहिए सर।
0: थैंक यू खालिद साहब, बहुत शुक्रिया
1: सर, मैंने आपका काम जाया किया।
0: नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे अच्छा लगा, आपने मुझे प्यारा बोला, खूबसूरत बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा
1: सर। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, सब सुनने वालों को सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया खालिद साहब, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। खालिद साहब थे जी मेरे साथ, और खालिद साहब कहते तुम बहुत प्यारे हो। हाय हाय मेरी ड्यूटी जावा हवा दे नाल। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी,
2: फरम भाई
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई, आप बताइए आप कैसे हैं।
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
0: क्या हो
2: तरह प्यारा,
0: क्या हो रहा था मेरे भाई।
2: कुछ नहीं, बस आपके शो का इंतजार था, पूरे 12 बजे ट्यून किया मगर आपकी आवाज नहीं सुनी, फिर मैंने बंद कर दिया, अभी फिर ट्यून किया और आपकी आवाज सुन ली।
0: नहीं मैंने तो पूरे 12 बजे ऑन एयर आया था।
2: पता नहीं कुछ आई थिंक सो पता नहीं कलाम या कोई सॉन्ग चल रहा था उस टाइम जब मैंने ट्यून किया।
0: तो भाई शुरू शुरू करने से पहले थोड़ा सा वो करना पड़ता है ना, थोड़ा सा अलग उल्ला।
2: नहीं आपका ना स्टार्टिंग से वो बीजीएम चलता था ना।
0: हाँ तो आज मैंने बीजीएम चेंज किया ना, मैंने दो अपने सॉन्ग बनाए ना तो वो चल रहे थे।
2: अच्छा
0: हाँ नहीं सुने आपने?
2: नहीं नहीं नहीं।
0: अरे ये वाला सॉन्ग, ये वाला सुने, ये चल रहा था, ये चल रहा था
2: सर, कुछ चल रहा था अपना हुरम भाई, अब मुझे मैंने बस थोड़ा सा प्ले किया फिर मैंने बंद कर दिया।
0: ये चल रहा था
2: ठीक है यार, यही चल रहा होगा।
0: नहीं नहीं पक्का बताए, ये चल रहा था या फिर यही चल रहा था
2: हुरम भाई? आज मतलब टेस्टिंग कर ली है मेरी
0: जी,
2: मैंने कहा आज मेरी आप टेस्टिंग कर रहे हैं।
0: नहीं नहीं मैं आपके कानों का ना वो याददाश्त चेक कर रहा हूँ कि आपके कानों में कौन सी आवाज, ये वाली बीजीएम था।
2: यस ऑफ कोर्स यही आपका बीजीएम है और ये मैंने आज सुना नहीं है, अभी सुना।
0: अच्छा तो चलें फिर बताएं जी, जिंदगी में आपने सबसे पहली तनख्वाह क्या दी थी?
2: सर 2500 रुपया।
0: 2500 किसको दी थी?
2: वो मैंने लगा के मामा को दी थी।
0: हाय तो अम्मा ने क्या बोला था?
2: अम्मा ने दुआ दी थी।
0: अच्छा या ये बोला था बस इतने से?
2: नहीं नहीं अम्मा ने दुआ दी थी।
0: अम्मा ने क्या दुआ दी थी?
2: जा पुत्र तेनु कदे तक यावा वाना लगन।
0: आए हाय हाय जा पुत्र तेनु वाला पाग लगाऊं हैं, कल तो तत्ती हवा ना लगे।
2: बिल्कुल सही है।
0: तो आजकल तो बड़ी तत्ती हवाएं चल रही हैं, तो क्या करते हैं आजकल?
2: आजकल बस वो तो फिर सजा में कुदरत है जी।
0: तो आजकल क्या करते हैं आप?
2: आजकल फरम भाई मैं कुछ नहीं, एक फ्रेंड है उसके साथ काम कर रहा हूँ परफ्यूम का।
0: परफ्यूम का ओके, अच्छा अपना बिजनेस कर रहे हैं
2: जी जी।
0: ओके वेरी नाइस ब्रो, कहाँ पे कर रहे हैं?
2: मीरपुर में।
0: मीरपुर ये वाला जो जेलम वाला मीरपुर है?
2: जी जी मीरपुर राकेश।
0: ओके तो परफ्यूम्स वहीं बना के लोगों को बेचते हैं या आप ऑनलाइन शॉनलाइन काम करते हैं?
2: नहीं खुरम भाई यही बना के मेरे दोस्त हैं मुल्तान से हैं वो, तो हम दोनों

0: आए हुए हैं गुजरात में ना, पंजाब में, तो फिर वहीं पे ही हम लोग जो है वो करते हैं काम इकट्ठे।
1: अच्छा, तो क्या एक अच्छी परफ्यूम की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या क्या चीज उसमें देखनी चाहिए?
0: खुरम भाई, परफ्यूम जो होती है उसमें आप ऐसी चीजें यूज होती है जैसे बेस यूज होती है, ठीक है, उसके बाद ऑयल यूज होते हैं, ठीक है, T20 ऑयल और इस तरह के कुछ ऑयल जो है वो इस्तेमाल होते हैं परफ्यूम्स में।
1: अच्छा,
0: अल्कोहल इस्तेमाल होता है। और जैसे खैर परफ्यूम जो है वो काफी टाइम लेती है, जब हम उसे बनाते हैं ना तो वो सेल होने में काफी टाइम लेती है, ऑलमोस्ट 1 मंथ लगता है उसको तैयार होने में।
1: अच्छा
0: जी, तो अभी है एक बार मतलब हमने वो बनाई थी, अभी है हम जो इतर नहीं होते इतर वो बना रहे हैं हम लोग।
1: अरे वेरी नाइस।
0: तो
1: खुशबुएं, खुशबुएं जो है ना वो नफीस लोगों को पसंद होती हैं, पता है आपको?
0: जी बिल्कुल ऐसे ही है।
1: और आप जो है ना
0: पसंद भी नहीं,
1: हाँ, आप जो है ना नफीस इंसान है इसलिए आपको खुशबू पसंद है, आप खुशबू का कारोबार करते हैं, अच्छी बात है। खुशबुएं बिखेरते हैं ना, खुशबुएं बिखेरते रहिए।
0: ये बिल्कुल जैसे आप खुरम भाई आते हैं ना तो यकीन करें आपकी बातें जो इतनी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके वालदैन को अल्लाह ताला सलामत रखे जिन्होंने आपकी इतनी अच्छी तरबियत की,
1: अरे
0: और आपकी जो बातें हैं यकीन करें बड़ी अच्छी होती हैं और सबक आमोज होती हैं, मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कोई एक चीज, कोई आप ऐसी बात कर जाते हैं जिससे सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि यार खुरम भाई ने ये बात की तो की किस वजह से की थी, इसके पीछे कोई लॉजिक क्या था।
1: अरे वाह, बहुत शुक्रिया।
0: आप भी तो खुशबू फैलाते हैं ना, आप भी तो, ये भी एक खुशबू है।
1: चलें फिर, मेरी खुशबू है तो आप लेते हैं, अपनी खुशबू भी भेजिएगा मुझे।
0: चलें इंशाल्लाह, जरूर खुरम भाई, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर भेजूंगा।
1: ठीक है, हम फिर उसका उसका शाउट आउट बना के लगाएंगे, आपके आपके खुशबू की मार्केटिंग करेंगे। ठीक है,
0: थैंक यू सो मच खुरम भाई।
1: आमीन आमीन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। खुशबुओं वाले भाई थे भाई, जैसे मुझे खुशबुएं बहुत पसंद है, होता है ना कभी कभार किसी को खुशबू बहुत पसंद होती है, कभी कभार या हमेशा, मुझे हमेशा पसंद है। Let's take another caller. Hello, अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहां से है? वालेकुम अस्सलाम
2: भाई, क्या हाल है?
1: मैं अच्छा हूँ जी, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल नूर हाशमी, जिगाज गार्डन लाहौर।
1: अरे नूर हाशमी साहब कहाँ गायब हो जाते हैं यार, पहले मुझे बताएं आप कहाँ गायब होते हैं? अच्छा, क्या कारोबार करते हैं आप?
2: आपको ऑन एयर बताऊं?
1: ऑन एयर बताएं, इसमें क्या मसला है?
2: ये बस ये गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं,
1: गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं।
2: अच्छा,
1: अच्छा,
2: तो आपके टॉपिक पे आने से पहले मैं एक बात करूंगा, आपने वारिस बेग का जिक्र किया।
1: जी जी,
2: तो हम उस वक्त रहते थे ग्वालपट्टी
1: में,
2: वारिस बेग की रहती ये बस्ती गेट के अंदर।
1: अच्छा,
2: तो अक्सर हम बच्चे होते थे तो वो यूनिवर्सिटी पे जानी, वहाँ से गुजरना गुनगुनाते हुए वारिस बेग ने ना।
1: अच्छा,
2: मिडिल क्लास फैमिली थी तो हमारे सामने से गुजर जाना, तो अल्लाह ताला ने उनको बड़ी मेहनत की, फिल्मों में आए, जीवा फिल्म के गाने गाए, और उसके बाद फिर उन्होंने रेस्टोरेंट ये क्राफी स्टेडियम जो है ना, वहाँ इनका रेस्टोरेंट है बहुत जबरदस्त है उनका, शायद अब BHA में भी बना लिया और BHA में इनकी रहायश है।
1: अच्छा,
2: तो अल्लाह ताला ने एक लोअर मिडिल फैमिली के बंदे को ना, अल्लाह ताला ने वो भी बख्शा, मेहनत की उन्होंने, तो हम उसको बचपन में देखा करते थे, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे,
1: आमीन आमीन।
2: तो जहाँ तक टॉपिक की बात है
1: जी,
2: मैंने BCOM किया तो मैंने एक जॉब शुरू की अकाउंट की।
1: अच्छा,
2: स्पेयर पार्ट की कंपनी थी फिलहाल में ना, तो पहली सैलरी मुझे मिली 95 से 3500 रुपए, तो 3500 भी काफी हो गए थे। अब आप मेरे जो मुलाजम है कोई 1,00,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, तो बस अल्लाह ताला ने फिर कर्म किया, मैं अपना काम शुरू किया, और भी मैंने अपने वाले साहब से गवर्नमेंट एम्प्लाईज से, तो उनको उनके हाथ से रखी, वालदा भी जिंदा थी, अब दोनों दुनिया में ही, अल्लाह उनकी मदद करे। तो बहरहाल इंसान को ना एक जिंदगी में, मैं तो ये समझता हूँ कि गोल सेट करना चाहिए, कोई आपकी जिंदगी में टारगेट हो, मुझे

0: टारगेट है ना, तो वो आपको दिल से उकसाता है। एक जुनून होना चाहिए, जुनून के आगे कोई मंजिल मंजिल नहीं रहती।
1: बिल्कुल ठीक है,
0: और कुछ पूछेंगे आप?
1: नहीं सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू। ओके जनाब, आगे बढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं एक गाना, और गाना बड़ा मज़ेदार है, मेरा बहुत फेवरेट है, और बहुत ही फेवरेट है, मैं कहूँगा कि प्ले कर देते हैं, लेकिन ये भी कहूँगा चल रहने दे।

जी जनाब, तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से का आगाज करते हैं और अब मौजू तब्दील करते हैं। तो बताइए जनाब, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन था कि जिसको आपने पहले देखने में कुछ और जज किया और जब आपने उसको पाया तो कुछ और पाया, आपने उसके बारे में कुछ और राय कायम की और जब वो आपको मिला और जब आपसे उसकी बात हुई और जब आपके साथ उसका ताल्लुक बना, कुछ वक्त गुजरा तो आपने उसको कुछ और पाया, अच्छा पाया या बुरा पाया, जो भी पाया, लेकिन आपने उसको कैसा पाया? चेहरा शनासी में आप कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, ये बता सकते हैं आप मुझे? फेसबुक के ऊपर FM 101 चैनल पाकिस्तान हमारा पेज है, उसके नीचे एक पोस्ट है, उसके ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं।

मलिक फराज मेरे साथ फेसबुक के ऊपर हैं, सलाम कह रहे हैं, हाल अहवाल पूछ रहे हैं। नुसरत साहिबा है मेरे साथ और कहती है जी सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से खुशामदी। फिरोजपुर रोड लाहौर से जो है वो प्रोग्राम सुन रही है।

0: साइम तबस्सुम में मेरे साथ और इतनी तारीफें मेरी की, हाय हाय। अब मैं आपको सुनाऊं या मैं सिर्फ खुद ही सुनूं? लेकिन साइम बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया। साइम मुझे पेरिस फ्रांस से सुन रहे हैं। साइम मुझे अच्छा लगा है भाई। रियाज भट्टी है मेरे साथ जी, लाहौर से प्रोग्राम सुन रहे हैं और कहते हैं बल्ले जी बल्ले। सुमित कुमार है मेरे साथ जी और कहते हैं योर प्लेलिस्ट इज ऑलवेज अमेजिंग। थैंक यू सो मच बड़ी, बहुत शुक्रिया। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, कैसे हैं करम भाई?
0: मैं अच्छा हूँ जी, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक जनाब, आपके दुआओं का तलबगार हूँ।
0: मैंने तो आपकी दुआएं आपके लिए बहुत ज्यादा की हैं, आप तलब क्यों रख रहे हैं? फिर भी आप तलब रख रहे हैं, इतनी ज्यादा तो की है मैंने।
1: तो दुआ यार ऐसी चीज होती है, जितनी हो कम होती है दुआएं, कौन सी मतलब अगर यहाँ पे नहीं कम आएगी तो आगे से आ जाएगी।
0: अच्छा तो मुझे ये बताओ मेरे भाई, नाम बताओ ना पहले अपना।
1: जी मैं मलिक इरफान बात कर रहा हूँ, मंडी बाल।
0: अच्छा मलिक इरफान, मुझे ये बताओ कि जब पहली दफा मुझे सुना था तो कैसा पाया था, क्या सोचा था कि यार कैसा बंदा है?
1: यार पहली दफा तो ना माने भाई डेथ के बाद ना मतलब किसी यार ये पे ना मेरी ना मतलब नजर ही नहीं टिकती थी। ये मतलब मैं कहता था यार रेडियो का मजा ही नहीं है ऐसे ना। वो एक भाई बैर थे सराय रमगीर से, अल्लाह ताला उनकी मदद करे, उन्होंने मुझे बताया कि यार एक खुरम भेज नामी यार ये शो करता है, अगर आप सुनोगे ना तो उम्मीद है कि मतलब ना उनका अफसोस जो है ना तुम्हें कम हो जाएगा।
0: अच्छा
1: तो उस दिन ना कुदरती जो है ना मौसम में मतलब ना ठंडा ठंडा था बरसात वाला, तो मैंने रेडियो ट्यून किया, आपने सॉन्ग भी बहुत अच्छे चलाए, ये जो हसी है ना आपकी
0: इसने
1: मुझे यकीन करे खेच लिया। मैंने कहा यार दुनिया में लोग मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब किसी बंदे की जगह से नहीं ले सकते, लेकिन मतलब उनको देखने से काम हो जाता है।
0: अच्छा
1: तो ये जो आप हंसते हैं ना वो सॉन्ग इंडियन है, वरना मुझे एक सॉन्ग याद आता है।
0: अच्छा नहीं बस वो याद ही रखना, गुनगुनाना नहीं, ठीक है?
1: हाँ नहीं गुनगुनाता नहीं हूँ। तो बाकी तनख्वाह की बात कर रहे हैं तो मैं
0: वो नहीं कर रहा अभी, वो वाली बात नहीं कर रहा ना, इरफान वो वाली बात खत्म होगी, पुरानी होगी।
1: अच्छा नई बात बताता हूं।
0: अभी अभी नई वाली बात ये है कि मुझे बताओ कि किसी को जिंदगी में देखा हो और पहली दफा और उसके बारे में कोई राय कायम की हो कि यार ये तो बंदा ऐसा हो ऐसा है, और फिर बाद में पता चला कि नहीं यार ये तो ऐसा नहीं है ये तो वैसा है, कोई है
1: ऐसा?
0: अच्छा चलो एक का बता दो मुझे।
1: ओ, मतलब नहीं मैं बात लंबी नहीं करूंगा, सिर्फ मुख्तसार ही करूंगा कि जिन दोनों के बारे में मैंने सोचा था ना कि ये अच्छे हैं वो बुरे निकले।
0: अच्छा
1: लेकिन जिसके बारे में बुरा सोचता था ना वो ही थे जुबैर, अल्लाह ताला उनकी मदद करे, वो मतलब इतने अच्छे खुरम भाई निकले, इतने अच्छे निकले कि मैं सोच भी नहीं सकता।
0: बुरा क्यों समझते थे उनको?
1: उनको ना मतलब वो एक दोस्त था हमारा, मतलब ब्लैंड भी था तोतला भी था, मतलब वो ना उनका मजाक बनाते थे।
0: अच्छा
1: तो इस वजह से मैं यार कहता था कि मतलब किसी की बेबसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। लेकिन बाद में पता लगा कि वो भी वो चाकू है जो मतलब अंदर से काटता है।
0: आहा, अच्छा
1: तो जिन लोगों के मैं मतलब गीत गाता था ना कि ये बहुत अच्छे हो गए ये बहुत अच्छे हो गए, तो एक तकरीबन एक साल पहले मुझे पता चला, तो एक तकरीबन 8-9 मुहर्रम की रात में मुझे पता चला।
0: चलो चलो उनके बारे में भी अच्छी अच्छी राय रखो। अच्छा
1: मैं इंशाल्लाह उनके लिए दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इन्होंने जो मेरे साथ किया है ना अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए कि बाकी मतलब इनकी वजह से किसी का दिल ना टूटे।
0: आमीन आमीन। थैंक यू इरफान बाबा, अपना अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखी यार, अपना ख्याल रखी, बच के रहें सपोलिया को, बच के रहें। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम,
0: क्या हाल है? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ जी, आप बताइए।
2: ठीक है
0: मैं अच्छा हूँ जी, आप बताइए कैसे हैं?
2: बस बहुत गुजर रहा, मैं चाहता हूँ आपके घर बॉडी गार्ड रहा हूँ, नौकरी नहीं मिल रही है।
0: अच्छा और मुझे किसने मारना है? मुझे तो खुद पास से ना 2-4 रुपए दे के किसी ने भेजना है क्या भाई? जान चाट साड़ी है
2: वीजे भी खोलोगे बाहर मुल्कों को लोगों को रोजगार मिले।
0: अच्छा वीजे खोलू मैं?
2: रोजगार को नौकरियां मिले हैं।
0: असल में मसला
2: फिर क्या करे
0: यार, असल में मसला भाई मेरे ये है ना कि वीजों वाली जो टूटी है ना उसके ऊपर ना रबर लपेट दिए किसी ने और सही कस के लपेट दिए और मेरे नाखून भी नहीं है ना कि मैं खोल सकूं।
2: आपकी बात काट दिया, गर्मी भी सच बढ़ रही है ना, बारिशें भी रुक गई है, सावन में दूसरे तीसरे दिन बारिश होती थी गुरु साहब।
0: हाँ तो आप दुआ करो कि गर्मी थोड़ी ज्यादा लगे तो वो जो रबड़ उसके ऊपर लपेटी हुई है ना वो पिघल जाए, फिर टूटी खुल जाएगी चीजों की।
2: मेरी ये बात है, मैं सोचता हूँ जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एसी एसी ये बच्चे छोटे उनके लिए बड़े मसाइल
0: है। आमीन आमीन। लेकिन कोई बात नहीं, इंसान ना बड़ी मजबूत चीज है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी आदी हो जाती है।
2: गुरु से जो पहला वक्त है ना वो मैं आपको बताऊं कि वो पुराना जो दौर था वो अच्छा वक्त था, तकरीबन हवाएं चलती थी, लेकिन वो जो वक्त आ गया बहुत मुश्किल है।
0: चलो मैं पक्षी लेके आता हूँ आपके लिए,
2: बहुत मुश्किल है।
0: ठीक, नहीं नहीं कोई बात नहीं, पक्षी लेके आता हूँ आपकी तरफ।
2: ठीक है, आपको पक्षी तो मिल जाए, आपके पास एसी लगेगा, आपको क्या है।
0: नहीं आपकी तरफ पक्षी लेके आता हूँ, मेरे पास एसी नहीं है, मैंने अभी अपना एक दोस्त खड़ा किया हूँ जो पक्षी मार रहा है। बड़ा ताकतवर, मैंने कड़ियल जवान रखा हुआ है पक्षी मारने का,
2: कड़ियल जवान ही, वो देसी घी थोड़े खत्म हो गया सर।
0: चलो अपना ख्याल रखो मेरे भाई, अल्लाह हाफिज। भाई मेरा बॉडीगार्ड बनना चाहता था। ओके जी, कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है?
3: ठीक।
0: कौन साहिबा है?
3: हेलो,
0: कौन बात कर रही है?
3: अंबर।
0: अंबर, हाँ जी अंबर, क्या हाल है आपका?
3: ठीक हो?
0: ठीक हो
3: जी।
0: कितनी ठीक हो?
3: ठीक हूँ।
0: अच्छा तो अभी तक सोई नहीं अंबर, अभी तक सोई नहीं हूँ।
3: नहीं, नहीं
0: क्यों नहीं सोई अभी तक?
3: नींद नहीं आ रही।
0: क्यों नींद नहीं आ रही? किसने आपकी नींद उड़ा
3: दी? आप कैसे फिर दिए रहते थे क्या?
0: अच्छा मेरे शो ने आपकी नींद उड़ा दी है?
3: हाँ।
0: हाय, मेरे शो में ऐसा क्या है, कोई मिर्चे हैं?
3: आपके साथ आप कोई होते हैं?
0: क्या होता है
3: आप कोई होते?
0: अच्छा यही चाहता था मैं। ओके जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट कॉलर है जी, कौन है, कहां से है मेरे साथ? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मा आपका पंखा बहुत तेज चल रहा है, थोड़ा आहिस्ता करेंगे इसको?
4: क्या
0: आपके पंखे का शोर बहुत आ रहा है?
4: अच्छा
0: हाँ,
4: अच्छा अभी भी आ रहे हैं?
0: नहीं अभी अभी कम आ रहे हैं। हाँ चलो बिस्मा कैसी हो?
4: मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसी हो?
0: बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बिस्मा क्या करती हो?
4: मैं कुछ भी नहीं।
0: कुछ भी नहीं करती?
4: करती हूँ।
0: स्टडी करती हो? कौन सी क्लास में हो?
4: मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ।
0: मेडिकल की, प्री इंजीनियरिंग?
4: जी मेडिकल।
0: प्री इंजीनियरिंग की है?
4: प्री मेडिकल, प्री मेडिकल।
0: चलो ठीक है, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर?
4: देखो मैं ना वो डीएचएमएस की स्टूडेंट हूँ।
0: अच्छा
4: सेकंड ईयर मैंने कर ली है।
0: अच्छा डीएचएमएस।
4: हाँ जी।
0: ओके तो बिस्मत डीएचएमएस क्या होता है ये जरा बताओ ना हमें।
4: होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो आप मतलब वो वाली डॉक्टर हो जिसका ना जिसका ना कोई नुकसान ना कोई फायदा है?
4: हाँ जी।
0: अच्छा मतलब फायदा भी कोई नहीं है?
4: नुकसान कम है फायदा ज्यादा है।
0: ओके तो मुझे ये बताओ
4: जी,
0: हाँ मुझे ये बताओ कि जिनकी जिनकी नजर थोड़ी कमजोर हो उनके लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए होम्योपैथिक वाली?
4: आपको पता है? वैसे
0: मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना।
4: हाँ वो रूटा इस्तेमाल करें।
0: कौन सा, क्या इस्तेमाल करें?
4: रूटा।
0: रूड़ा?
4: रूटा, रूटा।
0: रूड़े से तो आंखें जलती हैं, खारिश आती है आंखों में, कहते हैं तकी में खींच रूड़ा पे है। अच्छा चलो ठीक है, तो मुझे बताओ कि जिंदगी में कौन था ऐसा बिस्मा जिसको आपने देखा और आपने कहा यार ये तो ऐसा बंदा है या बंदी है पर वो वैसी नहीं थी?
4: जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं क्योंकि ऐसे होते हैं कि हम पहले देखते हैं तो लगता है कि बहुत अच्छे हैं, तो जब बात करते हैं तो पता चलता है बड़े हंसमुख हैं, बहुत अच्छे हैं। अक्सर ये मेरे साथ भी ऐसे होता है कि मुझे जब कोई देखे तो कहेंगे आप दिखने में तो बड़ी संजीदा लगती हैं, बहुत सीरियस लगती हैं, पर आपसे बात किए तो आप तो बड़ी हंसमुख है, हंसाती हैं, बड़ी मजाकी है, बड़ी इस तरह इनोसेंट है। अच्छा। मेरे साथ भी ऐसे हो जाता है।
0: अच्छा चलें ठीक।
4: तो पैसे की बात कर रहे हैं सैलरी की, वो तो मुझे नहीं आज की फर्स्ट टाइम कब मिली थी और कब, क्योंकि मेरी तो स्टार्टिंग से जैसे घर के काम करो तो मम्मा पैसे देती है कि चलो तुम्हें पसंद हुए तो मैं ये 200 मिलेगा ये। अच्छा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ,
0: मतलब आपने
4: तो याद ही नहीं है,
0: आपने कमाई घर में ही लगाई हुई है, घर वालों को लूटती है आप।
4: बस मम्मा होती है ना आदत डाली हुई कि बच्चा ऐसे खुशी खुशी काम करता है।
0: हाँ, बाबा की कर देती हूँ, बाबा की शर्ट प्रेस करनी है तो चलो बाबा कट दो 200 रुपया।
4: हाँ जी
0: चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है बिस्मा, खुश रहो, बाद रहो, सुखी रहो। ओके जनाब, आप सुन रहे हैं जी 101 इंटरनेशनल, 1:13 हुए, चाहते हैं कि भी आपके साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, बहुत सारे कॉलर्स मेरे साथ हैं, बहुत सारे मैसेजेस मेरे साथ हैं और बहुत सारे फेसबुक के ऊपर कमेंट्स मेरे साथ हैं। बहुत शुक्रिया जी आप सभी लोगों का। और इंसान की जो नफ्सियात है वो ये कहती हैं कि वक्त के साथ साथ उसको रिश्ते भी बदलने होते हैं, वक्त के साथ साथ उसको बहुत सारी आदत भी बदलनी होती हैं और वक्त के साथ साथ उसको अपने आप को मोल्ड करना होता है। लेकिन आप जिन लोगों के साथ रह रहे होते हैं और जिन लोगों के साथ आपने आपके रिश्ते जो है वो मुंसलिक होते हैं, वो जब आपको बदलता देखते हैं तो वो आपके बारे में राय कायम करते हैं, यार ये तो बहुत बेवफा निकला, ये तो ऐसा था, इसको ऐसा होना चाहिए था। लेकिन आई थिंक सो कि ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसको उस जगह से नहीं देख रहे होते जिस जगह पे वो मौजूद होता है, हम तस्वीर को उस एंगल से देख रहे होते हैं जहां से हम देख रहे होते हैं, उस आय उस लेंस से देख रहे होते हैं जहां से हमें वो दिख रहा होता है। जहां वो खड़ा है ना, अगर अपने आप को वहां रख के सोचे ना, शायद हमें वो फिर ठीक लगने लगेगा। तो किसी के बारे में भी अगर आप कोई राय कायम कर रहे हैं तो राय कायम करने से पहले उसके बारे में जरूर सोचिए कि उसने ऐसा किया क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या थी। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम
0: जी जनाब, क्या हाल है?
5: अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे भाई, ठीक हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा, नजर ना लगे तो बहुत अच्छा रहता हूँ, पेट खराब हो जाए तो फिर मसला हो जाता है। कौन साहब है, कहाँ से?
5: अल्लाह पाक आपको मेरे बात से बचाए जनाब।
0: आमीन आमीन आमीन। कौन साहब है, कहाँ से?
5: मैं भाईजान असद अली लाहौर से, पहली मरतबा आपके शो में।
0: अरे वाजी वाजी कमाल, असद अली साहब बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल की है, पहली दफा सुना है या पहली दफा कॉल की है?
5: नहीं, कौन पहली मरतबा की है, सुना तो मैंने काफी मरतबा आपको।
0: अच्छा, तो कॉल क्यों पहली दफा की है, इससे पहले कॉल क्यों नहीं की?
5: असल में मेरा नंबर नहीं मिलता, सच नाम मिलता
0: नंबर नहीं मिलता, आप मिलाते रहते हैं?
5: जी नंबर मिलाता रहता हूँ, कोशिश भरपूर करता हूँ मगर नंबर ही नहीं मिलता।
0: चले, आज आपका नंबर मिल गया है तो आप क्या आज एक खास बात कहना चाहेंगे हमें?
5: बस आपके लिए दुआ दिल से कि अल्लाह मेरे भाई को नजरे बस से बचाए।
0: आमीन।
5: और अल्लाह आपको दीन और दुनिया की खुशियां दिखाए।
0: आमीन, थैंक यू।
5: आपका टॉपिक क्या था, क्या बात कर रहे थे आप?
0: आज मैं बात कर रहा था कि मुझे लगता नहीं था कि असद ऐसा है, लेकिन असद निकल ऐसा गया। कौन है ऐसा आपकी जिंदगी में जिसके बारे में आप ये जुमला कह सकते हैं?
5: काफी आए हैं भाईजान, को एक हो तो बताऊं ना?
0: चलो फिर ना बताओ, नहीं पूछता, नहीं पूछता।
5: काफी आए, काफी आए हैं, काफी आए हैं, एक नहीं तकरीबन 4-5 आए हैं।
0: बस नहीं पूछता, बस
5: मतलब लीगा
0: नहीं, नहीं
5: बारे में आप रेड आए।
0: हाँ बस नहीं पूछता, ठीक है ना बताओ। चलो असद अपना ख्याल रखो, थैंक यू। और शुक्रिया असद मेरे साथ थे जी, और असद थे लाहौर से। कॉलर नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम, समीर राजपूत बात कर रहा हूँ मीरपुर से।
0: जी समीर भाई, आज मुझे लगता है मीरपुर में बड़ी मेरी बड़ी आवाजें आ रही हैं ना।
6: मीरपुर मैं क्या, तो कश्मीर में तो हर जगह आपको सुना जाता
0: है। अच्छा, तो आज मीरपुर जाग रहा है?
6: जी जी मीरपुर जाग रहा है, जी जाग रहा है, बिल्कुल जाग रहा है। मीरपुर के तो लोग वैसे भी ऑलमोस्ट बहुत
0: अच्छा ये क्यों? वो आप उनकी ज्यादातर फैमिलीज बाहर होती है तो उनसे गपे शपे लगाते रहते होंगे।
6: जी जी बिल्कुल ऐसे ही है।
0: अच्छा अच्छा ये क्यों है कि मीरपुर में बड़ा ट्रेंड है कि लोग अक्सर जो है वो फॉरेन जाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो वहाँ पे कम्युनिटी ऐसी है कि जो फॉरेन में
6: अपना क्या कहते हैं। परम भाई बात ये है कि आपने शायद सुना होगा जब ये मंगला डैम बना था ना, तो उस चक्कर में जो है यहाँ के जो लोग हैं वो आउट ऑफ द कंट्री गए थे।
0: अच्छा।
6: क्योंकि यहाँ डैम बना हुआ है, यहाँ पे लोग आबाद थे और फिर डैम की जरूरत पड़ी तो फिर गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे डैम बनाना था, तो फिर यहाँ के लोगों को जो है
0: पैसे मिले
6: थे और गवर्नमेंट से इन्होंने तकाजा किया था कि हमारा मतलब घर का एक जो फर्द है ना, हर घर का एक एक फर्द, उसको आपने बाहर भेजना।
0: ओके। अच्छा।
6: तो वो फिर जब बाहर गया तो उसने फिर अपने साथ पीछे से सबको एक एक दो दो करके सबको बाहर बुलाता गया। तो इस वजह से मीरपुर की जो फैमिली आधे से ज्यादा फैमिली जो है वो बाहर है और मीरपुर में जो है वो मतलब पंजाब साइड से के और मतलब डिफरेंट इलाकों से जो लोग हैं यहाँ पे आके आबाद हुए हैं।
0: अच्छा मैं दो दफा मीरपुर गया हूँ।
6: जी बिल्कुल, आपने बताया था एक बार आप यहाँ पे हमारे एक होटल है रेजेंसी, वहाँ पे आप आए थे। आए थे और दूसरी बार का मुझे नहीं पता।
0: दूसरी बार छुप के आया था।
6: ठीक हो गया,
0: घर वालों ने भगा दिया था और मैं छुप के चला गया था। स्कूल से छुट्टी की थी, बंक मारा था, मीरपुर चला गया था।
6: अच्छा, क्या बात है।
0: बस्ता पता मैंने कहाँ रखा था?
6: कहाँ?
0: वो जो है ना आपका नीले वाला गुंबद वाली मस्जिद।
6: हाँ।
0: नीले गुंबद वाली मस्जिद, उसके साथ जो नीचे एक खेत जाता है ना, उसके नीचे एक दरख्त है, उसके साथ लटकाया था मैंने।
6: अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा।
0: फिर ऊपर वो जो चाचा फकीर है ना, उनसे छलियां भी खाई थी।
6: अच्छा।
0: पैसे नहीं दिए थे, भाग गया था।
6: अच्छा। ये तो गलत बात है यार।
0: हाँ तो आपने उनको सुबह 10 रुपए देने हैं। अच्छा मेरे हिस्से के।
6: चले सही हो गया, मैं ढूंढूंगा, अगर मुझे मिल गया तो मैं दे दूंगा।
0: फकीर चाचा को मेरा सलाम भी कहना।
6: ठीक हो गया।
0: ओके चलो मेरे भाई, थैंक यू, अपना ख्याल रखो।

ओके जी, फेसबुक में मेरे साथ मलिक फराज हैं जी, थैंक यू सो मच मलिक फराज। और के बी कहती हैं, माजिबी कहती हैं कि के बी यू आर दैट पर्सन, के आपकी पर्सनालिटी, आपकी गुफ्तगू दोनों सेम है। अच्छा, मैं माजिबी ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है कि जिसको आप कह सकती हैं कि नहीं यार ये दिखता ऐसा है ये, लेकिन ये है ऐसा नहीं। आकाश अली कह रहे हैं जी कि मैं भी हूँ यहाँ पे, थैंक यू आकाश। आसिफ निसार मलिक है मेरे साथ और कहते हैं कि सरगोदा से FM 101 1998 से सुन रहा हूँ, और जब मैं 8वीं क्लास का तालिब इल्म था, बट आज तक कॉल नहीं लगी मेरी, बेशुमार लोग मिलाए सोचा बेशुमार लोग मिले सोचा और निकले वो, अच्छा बेशुमार लोग मिले जिनके बारे में सोचा लेकिन वो और निकले, बट यही सोच के इग्नोर किया कि उनका अपना ज़र्फ हमारा अपना ज़र्फ। अच्छा पहले तो ये बताओ नासिर साहब, आप 1998 से सुन रहे हैं और 8th क्लास से सुन रहे हैं लेकिन कॉल आज तक नहीं लगी, आपने कॉल ऐसे कैसे मिलाई है? अभी मिलाएं आपकी कॉल, आज आपकी कॉल ना लगनी है, ठीक है, आज आपने कॉल मिलानी है। और उन्होंने बोला जी कि सेकंड ये बता दें कि सैटेलाइट पे FM 101 इस्लामाबाद सुन सकते हैं, बिल्कुल आप सुन सकते हैं, आप लिख सकते हैं radio.gov.pk और उसके ऊपर आप FM 101 को सिलेक्ट कर सकते हैं, गूगल के ऊपर जाके आप लिख लें कि लिसन लाइव FM 101, तो आपको वहाँ पे भी गूगल पे भी मिल जाएगा और वहाँ एक लिंक आएगा और उसको आप क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर भी आप लाइव भी सुन सकते हैं। मलिक फराज कहते हैं खुर्रम भाई आज आपने पूरे गाने लगाए हुए हैं तो एक मेरी पसंद का भी गाना लगा दें, किसी मेहरबान ने आके, किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी बदल दी, कितना बुरा।

ओके जी, हफीफा है मेरे साथ और हफीफा नूर इस्लामाबाद से प्रोग्राम सुन रही है। थैंक यू सो मच हफीफा, वेरी क्यूट एंड नाइस नेम यू हैव, हफीफा। हफीफा, ओ हफीफा।

हाँ, फीफा से याद आया जी कि फीफा जो है वो चल रहा है और फाइनल सिर्फ रह गया। वैसे मेरा वोट जो है ना वो स्पेन के लिए, लेकिन अगर के अर्जेंटीना जीत जाता है तो मेसी दुनिया का वो वाहिद प्लेयर बन जाएगा।

कि जिस जैसा प्लेयर न कभी दुनिया में आया है और शायद आने में कई सदियां लग जाएं, लेकिन मेरा वोट स्पेन के लिए। ठीक है ना फीफा? हाँ फीफा, आप बताइए कि आपका वोट किसके लिए है।

चल नहीं सकती, मेरे बगैर शायद ये मुमकिन नहीं है। और जिस तरह से मैं इसको रन कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं चला रहा हूँ, जिस तरह से मेरे साथ ये मुमकिन है, मेरे बाद पता नहीं क्या होगा, ये टूट जाएगा, ये बिखर जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा। अगर इसको हम गलत फहमी कहें तो वाकई में ये गलत फहमी है, और अगर इसको हम ये खुश फहमी कहें तो ये खुश फहमी है। ज़िंदगी का निज़ाम नहीं रुकता, ज़िंदगी चलती रहती है। हाँ, कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर हो जाती हैं, किसी के होने से, किसी के साथ चलने से, या किसी के अच्छे तरीके से निज़ाम चलाने से, कुछ और तरीके से चीज़ें चलाने से, शायद के कुछ कह सकते हैं आपके कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन आपके जाने से और आपके छोड़ जाने से निज़ाम थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब ज़रूर होता है, लेकिन लोग आदि हो जाते हैं, फिर उस ख़राब निज़ाम के भी लोग आदि होना शुरू हो जाते हैं। नौकरी छोड़ने से या किसी जगह से अलग होने पे हम सोचते हैं कि इनका तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, और इस दफ्तर को अगर मैंने छोड़ दिया तो ये कारोबार मेरे ही सर पे चल रहा है और मेरी वजह से हो रहा है। ये जो रिश्ता है ना, ये जो घर है ना, अगर मैंने छोड़ दिया ना तो बस ये घर तबाह हो जाएगा। और बाज़ुकत हमें लग रहा होता है कि हम जिसकी ज़िंदगी में है ना, और अगर हमने इसकी ज़िंदगी से चले गए तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अंधेरों में चली जाएगी। हम ये सोचते हैं कि हमने इतना वक्त इसके साथ गुजार दिया है, तो इसको छोड़ जाने से शायद कि ज़िंदगी वैसी ना रहे और ज़िंदगी खूबसूरत तभी होगी या ये शायद साथ रहेगा। तो आपको बताए दूं कि ज़िंदगी जो है वो आपको हर रोज़ एक नई सुबह का पैगाम देती है और हर रोज़ एक नई शाम का पैगाम देती है। जो सुबह होती है ना, ये आपको याद दिलाती है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। हर रोज़ सुबह होती है आपकी ज़िंदगी में, हर रोज़ एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नई सुबह है, एक नया सूरज है जो तुलू होता है। और अगर आप इस खुशफहमी में रहते हैं ना कि ये सारा दिन ही रहेगा, ये रोशनी ही रहेगी, और आप उस रोशनी में इतने महव हो जाते हैं कि आप किसी का अच्छा किसी का बुरा ये सोचने से कासिर हो जाते हैं, तो फिर रात भी आती है, वो सूरज गुरूब भी हो जाता है। ज़िंदगी पे भी कुछ ऐसी ही है, कभी सुबह कभी शाम, कभी अंधेरा कभी रोशनी। तो आपके पास जब रोशनी मौजूद है ना, तो उस रोशनी की कदर कीजिए, और आप उस रोशनी को हमेशा अपने पास जोड़ के नहीं रख सकते, वो रोशनी कभी ना कभी चली जाती है। आप चाहें भी ना तो उस रोशनी में कभी ना कभी ख़त्म ही हो जाना होता है। तो अपने आप को वलकान मत कीजिए, अपने आप को दुख में मत डालिए कि ये रोशनी क्यों ख़त्म हो गई है। उस रात के साथ सुकून हासिल करना शुरू कर दें कि हाँ, ये अब रात आ चुकी है, तो इस रात में मैंने सुकून हासिल करना है।

अल्लाह मौला है ना, अल्लाह मौला है जो रात करता है, जो दिन करता है। और अगर आप रात से बेजार हो चुके हैं ना, और अगर आप रात को ख़त्म करना चाहते हैं, ज़िंदगी में अगर अंधेरे हैं, उन अंधेरों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उस रात के साथ कुछ ऐसा ना हो जाइए कि सारी ज़िंदगी यही रात ही बाकी रहनी है, उस रात ने ढल जाना है, तुलुए सुबह ने हो जाना है, उस तुलुए सुबह का इंतज़ार कीजिए। और जब तुलुए सुबह हो जाए ना, तो फिर कल वाले तुलुए सुबह के साथ मत जिए, आज वाले तुलुए सुबह के साथ जिए, कल वाले तुलुए सुबह को भूल जाइए। हम जिंदगी में अक्सर गलतियां करते हैं कि हम कल को याद रखते हैं और कल के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि आज को बर्बाद कर देते हैं। हम दो कल के लिए हमेशा परेशान रहते हैं, एक वो वाला कल जो गुजर गया, वो वाला कल जिसने कल आना है, और जो आज आपके पास मौजूद है ना, उसकी रोशनी को नजरअंदाज कर जाते हैं। और आपको मैं एक पते की बात बताऊं कि आपके पास कोई कल कल नहीं होता, किसी कल पे आपका इख्तियार नहीं होता। आपके पास अगर इख्तियार है ना, तो वो सिर्फ आज के ऊपर ही है। और अगर आपका आज अच्छा है ना,

तो कल आप कहेंगे कि कल बहुत खूबसूरत था, और अगर आज अच्छा है ना तो कल ने भी अच्छा ही होना है, और अगर अच्छा नहीं होगा ना तो फिर आप कह सकते हैं कि कल बहुत अच्छा था। खैर, आज अगर अच्छा नहीं तो कल बहुत अच्छा हो जाएगा। ये था और हो जाएगा, इन दोनों पे आपका इख्तियार नहीं है। और शायद जो आज है ना आपके पास, बस उसी पे आपका इख्तियार है, है ना पते की बात। सो जनाब, लिव इन योर करंट, पास्ट को मत सोचिए, फ्यूचर के बारे में हलकान मत होइए। अल्लाह मौला है ना।

0501-000-101 is the dialing number, RS 137, and it's 18th of July 2026. RJKB is with you till the end of 2 o'clock. आप सुन रहे हैं 101 इंटरनेशनल इस्लामाबाद के स्टूडियो से बिल्कुल बाहर आज.

0: ओके जनाब ओके। और मेरे साथ जो है वो फेसबुक पे बहुत सारे लोग हैं और कॉलर भी बहुत इकट्ठे हो चुके हैं। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। आप सबकी कॉल्स को प्रोग्राम का हिस्सा मैं बनाऊंगा और आप सबकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, ठीक है ना। आपने जितनी कॉलें मिलाई हैं सबकी कॉलें लगेंगी जी। और मेरे साथ फेसबुक के ऊपर हैं बिस्मिल्ला और वो सलाम कह रहे हैं और कहते हैं आप कैसे हैं, और कह रहे हैं जी कि आपका शो बहुत अच्छा है, मैंने मानी भाई के बाद आपको लास्ट 2 वीक से सुन रही हूँ। अच्छा जी, चलो जी, थैंक यू सो मच। अगर आप सुन रही हैं जी, जायशा खान है मेरे साथ, सलाम कह रही हैं और कहती हैं शो इज़ ऑसम एंड प्लेलिस्ट इज आल्सो वेरी ऑसम। थैंक यू सो मच जायशा, बहुत शुक्रिया। हाँ, एक कॉल ले लेते हैं ना, उसके बाद इसको सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप बिजी हैं आई थिंक सो, आप जरा फ्री हो जाएं फिर बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम
1: सर।
0: वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है?
1: भाई ठीक हो?
0: मैं चंगा जी, तुसी दसो की
1: हाल? इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे कर लेते हैं आप?
0: बस ये मैंने ना अपने साथ एक तार फिट की हुई है, वो AI के साथ लगाई हुई है, बस वो AI मुझे बातें बताता रहता, मैं करता रहता।
1: माशाल्लाह जी, माशाल्लाह।
0: टेक्नोलॉजी
1: है जी जी। अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे माशाल्लाह जी।
0: आमीन आमीन।
1: बस ड्यूटी पे बैठा हूँ, बाकी सब सो रहे हैं, बिल्कुल खामोशी है, सन्नाटा है।
0: अच्छा।
1: लेकिन आपकी आवाज मेरे कानों में पड़ी है, बस माशाल्लाह काफी देर से शो सुन रहा हूँ। तो सर बात ये है ना, जिस इंसान के अंदर जज्बात का कंट्रोल होगा, सब्र होगी, बर्दाश्त होगी, और जिसने अपने आप को समझा, अपने आप को सबसे मुश्किल काम है अपने आप को समझाना, दूसरों पर तनकीद करना बहुत आसान है। आज हम लोग रोजाना देखे गिबत करते रहते, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, तो बस ये है कि अपने आप को सबसे मुश्किल काम है सर समझाना। जिसने अपने आप को समझा लिया, जिसने कंट्रोल किया, जज्बात को बर्दाश्त किया, वो इंसान यकीन करें कामयाब होता है। जैसे आप जिस तरह आप हैं,
0: वो
1: इंसान कभी जिंदगी में मार नहीं खाता, वो इंसान कामयाब हो जाता है और बुलंदी तक फूल लेता है, वो कामयाबी उसकी कदर बन जाती है। मेरे जहन में यही बात आ रही थी सर।
0: परवेज साहब, आप इतनी समझदार बातें कहाँ से लाते हैं? क्या खाते हैं, जामुन खाते हैं?
1: आप लोगों से सुनना, पढ़ा लिखा नहीं, आप लोगों से सीखते हैं सर। बस रात की तनहाई में ड्यूटी होती है, बस सीखते रहते हैं आप लोगों से।
0: अच्छा,
1: तो आपकी तरफ बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं। मैंने बोला था आप कभी किसी दिन मुलाकात भी हो जाए
0: सर। ताबेदार, मैं हाजिर ताबेदार।
1: मेरे इलाके के एक जफर भाई बोल रहे थे, इधर कहीं ऑफिस में बोलते हैं मुलाकात होगी। मैंने बोला इंशाल्लाह जरूर होगी।
0: जी जी जरूर इंशाल्लाह, जब आप कहें मुलाकात, हाजिर में ताबेदार।
1: आप जैसे लोग मेरे दिल के करीब होते हैं और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं।
0: बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत
1: कह रहा हूँ,
0: आपकी मोहब्बत।
1: माशाल्लाह डॉक्टर सादर साहब, अनिल आप ही आएंगे, जितने भी सुनने वाले सबको सलाम, अल्लाह आपको सलामत रखे।
0: सलाम, थैंक यू परवेज साहब, बहुत शुक्रिया। आप बड़ी मोहब्बत देते हैं जब भी आते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। हाय हाय हाय हाय। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
0: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, क्या हाल है?
2: हमीद गुलार कर रहा हूँ सर।
0: हमीद साहब, क्या हाल है मोहतरम, कैसे हैं आप?
2: आप ठीक हैं सर, खैरियत से हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आसानी कर दिया करें ना मेरे लिए, बस ऐसे ही हमीद गुलार कर रहा हूँ, है ना?
2: नहीं तो वो ठीक है, मैं मेरी आदत है, मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ मैं अपना तारुफ खुद कराता हूँ।
0: अरे कमाल कमाल कमाल।
2: हाँ,
0: तो मीर गुल साहब
2: जो है वो अलमर मकसूद साहब अपने किसी भांजी या भतीजे के यहाँ मेहमान चले गए। सुबह उन्होंने नाश्ते में कहा तुहानू अंडा बना देवा, मैं क्या नहीं, मैंने गंदे ही रहने दे।
0: अच्छा,
2: ये मिजाज में पहले बड़ी एक मैंने आपको एक इशारत बात की है। निदा फाजली ने बड़ी अच्छी बात की थी, मैं आपको टॉपिक के जरिए मुख्तसर की बात करूंगा। उन्होंने कहा था कि देखिए कि वो कहते हैं कि खुशहाल घर, शरीफ तबीयत, सभी का दोस्त। खुशहाल घर, शरीफ तबीयत, सभी का दोस्त, वो शख्स था ज्यादा मगर आदमी था कम।
0: आए हाय हाय हाय, कमाल कमाल अमीर गुल साहब, कमाल।
2: अब मैं इसकी डेफिनेशन नहीं करूंगा इस शेर की, ये बड़ी एक अलग गुफ्तगू है, फिर जरा थोड़ी सी कील हो जाएगी। अगर मैं इस काम को आसान कर दूं इस बात को, तो निजा फाजली के शेर से आसान कर देता हूँ
0: जी,
2: कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी।
0: हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी,
2: जिसको भी देखना हो कई बार देखना।
0: आए हाय हाय, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, वाह वाह।
2: हाँ, तो आपको पहली जो होती है, कुछ लोग बड़े दिलचस्प होते हैं, किसी से कहा आप बड़े दिलचस्प आदमी है, उसने कहा जी दिल तो है, कहीं ना कहीं चर्च को करना पड़ेगा। तो बात यह है कि पहली मुलाकात में नहीं पता लगता आपको।
0: अच्छा हमीद गुल साहब, एक चीज में ना मेरी इसलाह कीजिएगा, मैं समझता हूँ कि इंसान जो है ना वो मौके, महल और अपने अंदर के मौसम के साथ साथ बदलता रहता है। उसका मिजाज कैसा है इस वक्त, उसके अंदर हार्मोन्स का लेवल कैसा है, वो इस वक्त उसका मूड कैसा है, वो डिपेंड करता है कि वो कैसा इंसान है।
2: तो ये आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि हम दो कल के दरमियान में जी रहे हैं, लेकिन अभी आप खुद ही कह रहे थे ना कि हम दो कल, एक माजी और एक आने वाला। और आप मुझसे भी कह रहे हैं कि मेरी इसलाह करें, तो हैं बात यह है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मेरा ध्यान कहीं और चला गया।
0: मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मैं ये सही फरमा रहा हूँ कि इंसान का जिस तरह का अंदर का दिल का मौसम होता है, या जिस तरह के मौका महल में जो उसके दिमाग के अंदर चल रहा होता है ना, जंग चल रही होती है, वो जिस तरह अगर वो खुश है तो वो बहुत खूबसूरत और एक अच्छा इंसान है, खुश अखलाक इंसान है। अगर वो दुखी है, परेशान है और टेंशन में है तो वो फिर गुस्सीला इंसान है, बहुत बदतमीज इंसान हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ
2: जब आप अगर किसी के सामने जाएं, तो मेरे वाले साहब एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे, कहते कि आदमी के मिजाज के साथ चलना चाहिए आप। आप उसके मिजाज को देखें ना, आप अपने अपने अंदर की जो चीज है उस पर अप्लाई करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप कोशिश करें कि उसके मिजाज से, मिसाल के तौर पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं आया आपके पास कोई और बात लेके, आपके वैन डाइवर्ट हो गया, मैं आपके मौजूद से हट गया मिसाल के, इसी तरह कोई आपके पास कोई शख्स है, आपके अंदर कोई और बात चल रही है और वो आगे बैठा, तो इंसान है, उसके अंदर तब्दीलियां तो आती रहती हैं।
0: ऐसा ही है,
2: वो परेशानियों में तो हर इंसान गिरा हुआ है ना।
0: बिल्कुल,
2: तो हर आदमी अपनी परेशानी में, और ये जमाना बात करें तो मुझे तो हर आदमी सोया हुआ लग रहा है। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, पहले मैं देखता था कि लोग अपने साथ बातें करते थे, अब वो कानों में लगाया होता है उन्होंने एंट्री, तो मुझे आज भी ऐसा लगता है कि शायद वो खुद से ही बात कर रहा है, वो किसी से भी। ये मतलब ये कलमी है, हम इसकी जद में आए हुए हैं और ये बात की और किसी और तरफ चली जाएगी। ये जो हम पे तहजीब का हमला हुआ, हम उसका बड़ा, इसमें बड़ा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी बड़े उस्ताद का बड़े किसी मुहक्कर की बात कर रहा हूँ, तो हम पे ये जो हमला हुआ तहजीब का, हम इसकी जद में बड़ी बुरी तरह से आए हैं। अब ये एक और पहलू है आपके सामने, मतलब इसकी बड़ी, आप इंसान को समझना बड़ा मुश्किल है और इंसान को समझना बड़ा आसान भी है। अगर वो आपको बड़ी आसानी से मुयसर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आ तो गया आपको आसानी से मुयसर, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उस तक पहुंच जाए। वो हर आदमी के बड़े चेहरे, इसलिए मैंने आपको जो शेर सुनाया कि वो शख्स था ज्यादा मगर आदमी था कम। आप शख्सियत है, आदमी उसकी बड़ी शख्सियत होती है, उसके बड़े चेहरे होते हैं, वो समझता है वक्त के साथ साथ। मैंने जिंदगी में शायद मैं उनका एक हिस्सा था, तो मैंने उसमें कहा था कि चेहरा शनास लोगो, क्या तुम हवा शनास भी हो? तो हवा शनासी जो है वो भी उसके गर्द बड़ा काउंट करती है। तो वो जो माहौल है आपका,
0: अरे आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया अमीर गुल साहब, क्या चेहरा शनास लोगो, क्या तुमने हवा,
2: क्या तुम हवा शनास भी हो?
0: हाय हाय हाय, क्या तुम हवा शनास भी हो? खत्म होगी बात ही, खत्म होगी। मीत सर बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू
0: जी, थैंक यू सो मच। ओके जनाब, एक गाना आपको सुनाते हैं, वापस आते हैं, मेरे साथ रहिएगा। दिस इज द लास्ट सॉन्ग और फिर कुछ आपके साथ गुफ्तगू करनी है, आप कॉलर्स को प्रोग्राम कैसा बनाना है। नूर है मेरे साथ, नूर ही आपके नाम करते हैं।

तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहा और हम चुप ही रहे। तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहा और हम चुप ही रहे, कुछ भी ना किसी से कहा और हम चुप ही रहे। बेवफाई का गिला तुझसे करते तो कैसे, बेवफाई का गिला तुझसे करते तो कैसे, हम तो रुसवाई का गम दिल में भरते ही ऐसे। तेरी चाहत का जो था दिल के पार हुआ, तेरी चाहत का जो तीर था दिल के वो पार हुआ और हम चुप ही रहे।

तेरी यादों के दिए शब भर हम जलाते रहे, अश्क आंखों में छुपाकर मुस्कुराते रहे, जख्म जो तूने दिया वो जिगर पार हुआ और हम चुप ही रहे। कुछ कभी ना किसी से कहा और हम बस चुप ही रहे। तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहा और हम चुप ही रहे।

0: लाइव सुनो, मेरे को बड़ा मजा आएगा, कॉल पे थोड़ा कम आवाज आ रहा है।
1: नहीं नहीं कॉल पे सुनो, कॉल पे है? बताओ
0: एक बात गलत है।
1: यार धिक्का लगाओ, धिक्का कसम से, बड़ा ढीला हो रहा है यार, अभी ना जोर नहीं लगा।
0: मार के जगह
1: सोनिया, धिक्का लाई ना। हाँ सुनाओ।
0: मैं बात ये कर रहा हूँ कि अभी जो शो खत्म होने में हो,
1: हाँ,
0: तो किस गाने को चला देना, ठीक है, एंड में भी।
1: चलो ठीक, अभी तो अभी आप राजी हो ना?
0: ठीक है, राजी है। सुनो भाई, लाइव सुनो, मजा आएगा। लाइव सुनो, लाइव कॉल पे नहीं, लाइव मजा आएगा। आवाज बड़ा होता है, ये सही होता है। अभी चला इसको।
1: चलो चलो, ओके चला दिया,
0: खत्म है, इसको चला के रख।
1: ओके ओके, ये ले ये ले।

0: ओके जनाब नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। ओके मेरा भाई आपने बिल्कुल नाराज नहीं होना, मैं जाते हुए ना ये गाना प्ले करके जाऊंगा, ठीक है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताइए आप कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ जी।
1: अच्छा भाई अभी का सॉन्ग लग सकता है या टाइम शॉर्ट है?
0: नहीं भाई अभी फरमाइश पूरी नहीं हो सकती, बस फरमाइश उसी भाई की पूरी होगी जिसने कहा चला के रखो चला के रखो।
1: जी भाई
0: फरमाइश किसी की पूरी नहीं होगी, सिर्फ उसी भाई की पूरी होगी जिसने कहा था चला के रखो, इसको चलाओ यार इसको चलाओ।
1: उसने तो भाई आपको ऑर्डर दिया है ना, हाँ, तो था एक
0: हाँ, तो वो ऑर्डर अभी ऑर्डर ओबे हो गए, चलाओ चलाओ इसको चला के रखो चला के रखो इसको चला के रखो यार, इस पंजाबी गाने को चला के रखो। बड़ा मजा आया मुझे कसम से सुन के, ऐसे बहुत मजा।
1: मैं सुनता रहा हूँ, मैंने कहा ये तो ऑर्डर स्टील ऑर्डर दे रहे हैं भाई।
0: अरे लव यू
1: सर पे खड़ा हो गया जैसे।
0: हाँ उस भाई के लिए प्यार, अरे भाई लव यू अल्लाह हाफिज। ओके जी नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, कौन है?
2: वालेकुम सलाम
0: जी मोहतरम, क्या हाल है आपके?
2: आपकी अबासी साहब
0: जी, अबासी साहब कैसे हैं आप? जरा वक्त कम है, फटाफट बोलिएगा
2: यार। मुझे पता था वक्त कम है यार, मैं ये आखिरी कॉल थी, मैं इसके बाद नहीं मिला, प्रोग्राम सारा मिस हो जाता है कॉल
0: में। नहीं कोई बात, कोई बात नहीं, आपकी कॉल में लूंगा, आपकी पूरी बात सुनूंगा।
2: अच्छा वो मेरा एक सवाल करना है, बाजार से सवाल करना।
0: जी जी सुनाइए सुनाइए।
2: वो आप ही से करना है क्योंकि और भी होते, लेकिन आप ही इसका जवाब देंगे आपके साथ।
0: अच्छा चलें करें सवाल।
2: भाई यार वो यहाँ पे आप जो टाइमिंग है शो की, यहाँ पे एक और आरजे पहले शो करते होते थे असन,
0: असन जी जी जी,
2: उनका भी अच्छा पता हो वो कहाँ चले गए।
0: अच्छा वो
2: यहाँ से विजिट के लिए गए थे दुबई, वापिस कोई पता नहीं है।
0: अच्छा वो वाले भाई जो है ना वो आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं आरजे एहसान साहब, तो वो जब आएंगे तो फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे।
2: हाँ तो वर्षों नहीं रहा फिर युक्त हैं,
0: बिल्कुल ठीक ठाक।
2: अच्छा तो है आपका माशाल्लाह,
0: थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका।
2: सर बहुत शुक्रिया टाइम का, मैं देख रहा
0: हूँ, थैंक यू ना फेस। नेक्स्ट कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम। ओके जी नेक्स्ट कॉलर लेते हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी लग गई आपकी कॉल, वालेकुम अस्सलाम।
3: सर क्या हाल है?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ जी, बताइए आप मोहतरमा कैसी हैं आप?
3: अल्लाह का करम है, करम वाला का सर, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह।
0: अच्छा
3: बड़ी मेहनत से ही कॉल लग गई है।
0: चले लग गई आपकी कॉल जी,
3: तकरीबन एक बजे से हम कॉल मिला रहे हैं।
0: चले अब आपकी कॉल लग गई है, क्या कहना चाहती हैं?
3: सर टॉपिक के बारे में ये कहना कि एक दोस्त है हमारी और कहते थे कि उसका लहजा नहीं ठीक है, ये मतलब मिजाज भी बहुत सख्त है, लेकिन जब उसे जाना शरीर से तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है।
0: अच्छा
3: बहुत अच्छी है।
0: क्या नाम है उस दोस्त का?
3: जी उसका नाम है अफशीन।
0: अफशीन
3: जी,
0: चलें जी अफशीन खुश रहे और आप भी खुश रहें, ठीक है
3: जी। और सर पोएट्री कहनी मुझे
0: जी, नाम बताइए अपना।
3: जी लाहौर से इरम बात कर।
0: ओके इरम कहिए जी पोएट्री।
3: हर रिश्ता इतनी शिद्दत से निभाते हैं हम, हर रिश्ता इतनी शिद्दत से निभाते हैं हम कि आखिर में अकेले ही रह जाते हैं।
0: हाय हाय हाय कमाल इरम, थैंक यू
3: जी सर। और सर नीला पी के लिए पोएट्री अगर आपकी इजाजत हो।
0: जी जी
3: तो आप दूर हैं मगर दिल में ये एहसास होता है
0: जी
3: कि कोई तो है कि दिल के हर पल पास होता है
0: जी।
3: याद तो सभी की आती है मगर आपकी याद का एहसास भी कुछ खास होता है।
0: वाह कमाल,
3: और थैंक यू सर, सब सुनने वालों को सलाम और सब सुनने को लिखते सलामती की दुआ, आप भी हमेशा सलामत रहें, खुश रहें, बाद रहें।
0: बहुत शुक्रिया जी रम, थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप कहिए कैसे हैं आप?
4: अल्हम्दुलिल्लाह अभी कॉल मिला ही और अभी मिल गए।
0: देखें देखें कितना अच्छा हूँ ना मैं, आपकी कॉल एकदम से उठा ली,
4: थैंक यू सो मच। तो सुरम भाई जी अभी थोड़ी देर पहले तेरी उल्फत में सनम
0: जी,
4: ये किसकी आवाज में है?
0: ये है जनाब तेरी उल्फत में सनम, ये आई थिंक सो एआई जनरेटेड है।
4: मुझे बहुत अच्छी आवाज है, नेक्स्ट प्रोग्राम जब आप करोगे ना फ्राइडे ये पूरा आपने सुनाना है।
0: अच्छा ठीक है,
4: मैं सियालकोट से ताहिर बात कर रहा हूँ।
0: ओके ताहिर साहब, ये ना आपको मैं, बल्कि अभी एक काम करता हूँ, मैं जब जाऊँगा ना मैं इसको क्यू लिस्ट में डाल के जाता हूँ। तो जब मैं
4: बहुत अच्छी,
0: तो जब आप
4: स्पेशल मैंने इसलिए फोन किया है,
0: अच्छा
4: जिसकी आवाज उसका नाम मालूम किया
0: है। अच्छा ये लूफी, आई थिंक सो लूफी लिखा हुआ है गाने के अंदर, लूफी मिक्स, ये एक AI जनरेटेड आई थिंक सो वॉइस है। लेकिन एनीवे मैं आपको ये आपके लिए प्ले करके जाऊंगा, ठीक है? आप जब प्रोग्राम एंड होगा ना तो आपने सुनना है, आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है? थैंक यू मेरे भाई, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम,
5: सुहेल बोल रहा
0: हूँ। जी सुहेल साहब,
5: जनाब आपने आज बहुत मौजूद, मैं काफी अच्छे से आपको सुन रहा हूँ, इत्तेफाक आज हुआ है।
0: जी जी,
5: आपने जो बात की है ना चेहरों के मुतालिक,
0: जी जी,
5: कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो कुछ उन चेहरों से कुछ पता नहीं चलता ये अंदर से कैसा है बाहर से कैसे है जो नजर आता है, लेकिन उनकी गुफ्तगू जो होती है ना उससे पता चलता है कि ये आदमी कितना गहरा है और कितना ये ऊंचा है या सिलसिला, उससे पता चलता है कि ये नेगेटिव सोच रखता है या पॉजिटिव सोच रखता है।
0: वो कहते हैं ना सर, जबान इंसान का आईना है।
5: जी हाँ बिल्कुल, और चेहरा वो कहते हैं जी चेहरा आईना होता है, लेकिन मेरा तजुर्बा जो है ना वो ये कहते हैं कि चेहरा आईना नहीं होता, गुफ्तगू आईना होती है।
0: सर आपसे मुत्तफिक हूँ मैं,
5: होती है।
0: मुत्तफिक हूँ सर आपसे, 100% मुत्तफिक।
5: तो खुर्रम जी काफी अच्छा सवाल हुआ, आज ही इत्तेफाक हुआ है।
0: जी जी,
5: तो कुछ बातें ऐसी हैं जो दिल को छू लेती है आपकी बातों से और ये सारा सिलसिला। अल्लाह सलामत रखे आपको,
0: जज़ाकअल्लाह। नाम क्या है सर आपका, नाम बताइए, नाम बताइए सर, नाम सर नाम बताइए, अपना नाम बताइए सर, नाम।
5: मेरा नाम सुहेल है जी।
0: अच्छा सुहेल साहब, जब आपने कॉल की शुरू में बोला ना कि आपको काफी अरसे से सुनता हूँ, इत्तफाक आज हुआ है, तो मैं डर गया था, पता क्यों? मैंने कहा सुहेल साहब
5: डरने वाली चीज़ तो नहीं है, पर मैं समझ रहा हूँ कि आप शायद डर गए होंगे।
0: सुहेल साहब डरा दिया आपने मुझे, मैं अटेंटिव होके बैठ के मैंने कहा सुहेल साहब को ले के
5: आए, मुझे तो यकीन है कि आप डरने वाली चीज नहीं है, डराने वाली चीज है।
0: अस्तगफिरुल्लाह, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, नहीं है मेरे सींग सुहेल साहब, रखो। ओके जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं चंगा जी, तुसी दसो जी, ठीक हो जी? बालो खैर है, आमीन जी आमीन, डेरा डेरा मेहरबानी, डेरा डेरा मनाना, जज़ाकअल्लाह, डेरा मनाना। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम।
6: मैंने कहा जी पहला ऐसा भाई देखा है जो डर डर के भी इतने कह के लगा रहा, अल्लाह ताला ये कह के नसीब करे मेरे भाई को,
0: आमीन। डरने में ना वो जब इंसान डर जाता है तो फिर ज्यादा हंसता रहता है ना, ओवर एक्टिंग नहीं करता जैसे बंदा हंस हंस के, मैं बस वो कर रहा था।
6: मैंने कहा कि वो शेड पे किसी और का गाना छोड़ के जाने तो हमारे लिए भी कोई इब्रार की तेरे रंग रंग हम लगा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी,
0: तेरे रंग रंग रंग रंग गुनगुना के सुनाएंगे तो फिर मजा आएगा।
6: तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग

0: तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मोला रंग रंग नाम बता देता अब्दुल करीम वर्क कर रहा हूँ तनोल से।
1: आए हाय अब्दुल करीम साहब बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं माजरा चाहूंगा, मैंने सर्च किया मुझे मिला नहीं है। ठीक है
0: अब रार की तेरे रंग रंग नहीं है,
1: बस वो ढूंढना पड़ेगा ना, जरा टाइम लगेगा अभी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, कॉलर बहुत,
0: थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मेरी बेटी जा गई उसके लिए ऑटो बच्चों लगा देना, फिर रंग रंग जहांगीर का वो तो मैं आपसे सुनता रहूँ, चार नंबर वाली है मैं ऑटो बच्चों।
1: अच्छा चले ठीक है मैं ढूंढता हूँ,
0: बच्ची तकलीफ में जा गई थी, हमने तकलीफ में आपको एंजॉय करना।
1: अरे अरे जजाक अल्लाह, अरे जजाक
0: अल्लाह, दुआ करे अल्लाह उसकी तकलीफ खत्म करे, आमीन
1: आमीन, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे, अल्लाह ताला उसके लिए
0: आसानी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज,
1: आमीन, अल्लाह हाफिज। लाके रख लाके रख, बन ना करी ओए केबी, सुनया तू, लाके रख लाके रख, बन नहीं करना ओए केबी।

लाके रख लाके रख। ओके जनाब, इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है, इजाजत चाहने का वक्त हुआ चाहता है, हर चीज को इख्तिताम चाहिए, हर चीज का एक जवाल है, हर शय को इख्तिताम है, हर शय को खुदा हाफिज कहना होता है। कहते हैं जी कि सब माया है, आज के प्रोग्राम का भी इख्तिताम हुआ चाहता है।

होपफुली जी कि आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा. आज के प्रोग्राम में आपके साथ जो दो घंटे की नशिस्त रही, आप सबने एंजॉय किया होगा, आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा, मुझे बहुत कुछ सिखलाया आपने. आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबके प्यार का, आप सबके खलूस का बहुत शुक्रिया कि आप रात को इतनी देर तक मेरे लिए जागते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं, मेरे साथ रहते हैं, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी मोहब्बतों का और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं. जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनका भी बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने साइलेंटली सुना उनका भी बहुत शुक्रिया. दौरान गुफ्तगु किसी के कान को, किसी के दिल को कोई बात गिरा गुजरी हो तो माफी चाहता हूँ. दौरान गुफ्तगु अगर मैंने किसी की दिल आजारी की हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ. ये अनजाने में हुआ होगा, जाने में कभी नहीं हुआ होगा, तो अनजाने में जो हुआ है उसको माफ कीजिएगा. इंसान हूँ, खताकार हूँ, खताओं का पुतला हूँ, खताएं माफ कर दीजिएगा. रब भी माफ करता है और रब की सुन्नत आप भी अपनाइए, आप भी माफ कर दीजिए. आपके इर्द गिर्द जो हैं उनको भी माफ कर दीजिए. प्रोग्राम में अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं सो डू लेट मी नो. आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, kb.beg लिखेंगे, मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा. और आपने मुझे कोई भी प्रोग्राम के हवाले से सजेशन देनी है तो जरूर सजेस्ट कीजिएगा. किसी मौजू के ऊपर बात करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा. इंस्टाग्राम के ऊपर आप लिखेंगे kb.beg, मैं आपको मिल जाऊंगा, kb.beg. अगर आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो खुर्रम बेग लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. अगले जुम्मे तक दीजिए मुझे इजाजत. हर जुम्मे को आपके साथ मेरी होती है मुलाकात 2 से 12 से लेकर 2 बजे तक. इस वक्त 2:14 हुए चाहते हैं, 18 जुलाई 2026 है. हफ्ता शुरू हो चुका है, हफ्ते का रोज शुरू हो चुका है और के भी आपसे इजाजत चाहना चाहता है. अगले जुम्मे तक दीजिए मुझे इजाजत. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम निगहबान. के भी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टाटा.

listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: ये जिंदगी भी अजीब है ना साहब, कि एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है।

वही जिंदा को मुर्दे से निकालता और वही मुर्दे को जिंदे से निकालता है और वही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है और इसी तरह तुम दोबारा जमीन में से निकाले जाओगे।

उसी ने आसमानों को सुतूनों के बगैर पैदा किया, जैसा कि तुम देखते हो, और जमीन पर पहाड़ बनाकर रख दिए ताकि तुमको हिला न दे, और उसमें हर तरह के जानवर फैला दिए, और हम ही ने आसमान से पानी नाजिल किया, फिर उससे उसमें हर किस्म की नफीस चीजें उगाई।

लोगों अपने परवरदिगार से डरो और उस दिन का खौफ करो कि ना तो बाप अपने बेटे के कुछ काम आए और ना बेटा बाप के कुछ काम आ सके। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, बस दुनिया की जिंदगी तुमको धोखे में न डाल दे और ना फरेब देने वाला शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में किसी तरह का फरेब दे।